0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: अपने घड़ी मिलाते चले सुबह के ठीक 5:05 हो रहे हैं. कैसे हैं आप माय डियर लिसनर्स? नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग. रियली होप इस मंडे मॉर्निंग की शुरुआत बस बढ़िया तरीका से हो चुकी है. लेट मी वेलकम यू ऑल एंड ऑफ कोर्स इट्स योर राइज एंड शाइन रेडियो मस्ती की लहरों पर. है तो सदाबहार गानों का सिलसिला, लेकिन दिल को छू लेने वाले आपकी मॉर्निंग को एकदम लवली गुड गुड बनाते हुए. सो व्हाटएवर यू माइट बी, रियली होप आपने अच्छे तरीके से जो वीकेंड है स्पेंड किया अपनों के साथ. शायद इधर फैमिली बर्थडे पार्टीज, अब नया दिन है, नई शुरुआत, नई सुबह, और इस नए पन्ने पर कुछ नया लिखने का टाइम आ गया है. सो जागिए, उठिए एंड अपनी मॉर्निंग को गुड गुड बेस्ट बनाने की कोशिश करें. हम भी कोशिश में लगे हैं भाई आपकी मॉर्निंग को एकदम लवली म्यूजिकल बनाने की. सैकात नफ नफ दूस नफ काट पर 5499 1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे आपके पास तो हमारा दिल है और हमारे पास आपका दिल भी है और आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 सैकात पर बापरे बाप इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं. गुड मॉर्निंग जी, आज है कौन किसका बर्थडे, चले देखते हैं. अशोक और नीता अपनी शादी की 40वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है, वो भी आप रहती हैं तेहोज. सो इमनिट परिवार की तरफ से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और सारे जश्न की खुशियाँ आप दोनों के नाम. क्या बात है, इतने सारा प्यार और इतनी सारी खुशियाँ. गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप दीपक एंड प्यारी वेदू के लिए, हमारे लिए भी थैंक यू सो मच. आप जहाँ भी रहें खुश रहें. ट्रिपल बर्थडे टुडे. ओहो, हस्बैंड है हरीश, बेटी अनुष्का, नीस विदिशा, वेल प्लान है. फ्रॉम आरती अवनी राम रतन परिवार ऑन जोशी से एंड हमारी ओर से भी बेस्ट, यानी कि रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार जी, हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं तुतेश्वर एंड किन की तरफ से, वैसे आपने नाम नहीं लिखा. ओहो, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे परिवार की ओर से हैप्पी बर्थडे शुभकामनाएं. कैसी हैं आप ज्योति शादोबिनागस से आपके पूरे परिवार के नाम, आशनी रेखा सुरेखा एंड माधव फैमिली और हमारे लिए थैंक यू. कैसे है भाई सूरज शर्मा सजादा प्रियोली से आपके नाम, पूरे परिवार के लिए हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय नीतू, थैंक यू सो मच. प्रणाम आपको सरिता, आप हो फ्रॉम गुडलैंड्स एंड पूरे परिवार के नाम. नंदिनी जी कैसी हैं आप, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. विदिशा अनुष्का एंड हरीश अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. विशेज फ्रॉम अश्विन अरविक धीरज आयुष गीता ज्योति हरक परिवार मौदा व्यसे. हमें भी रेडियो मस्ती के अलावा कुछ जजता नहीं है, थैंक यू सो मच. आप हो माला जी सुमाहू परिवार कैथोबोन से. विशिंग यू अ वेरी लवली मॉर्निंग माय फ्रेंड नुशरीन के लिए और सभी लोग जो काम पर हैं एट फिलिंग स्टेशन. गुड मॉर्निंग एंड बोकुआश टू यू टू. आप है अब्दुलैंड सायरा बानू. सो 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस और अपनों के साथ

महेंद्र कपूर के मधुर आवाज में सुबह सुबह रवि का संगीत। जी हाँ, हम राज, कोई राज नहीं है, बस 5499-1294 पर आप अपनों के नाम, अपने नाम भेजिएगा, कोई ना कोई पैगाम, नहीं तो आपके साथ सुबह के 7 बजे तक। ऑलरेडी 5:30 बोकुराज टू ऑल दोज जो काम पर जा रही है, और चाहे आप घर पर भी होंगे, लेकिन सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह हल्की बारिश भी हो रही है, तो बस अपना ख्याल रखिएगा। पोंडेलास्को से मेरी भाभी है पूनम भैया, राजेश की शादी की सालगिरह है, और लविश का मन शिका तू शिका दामाद दीपशय, साथी में दादी साबित, गौरी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हम सफर बनने के लिए. 5:40 इन सर बाहर गीतों के बीचों बीच बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जानते हैं आपका दिन कैसा रहेगा.
2: एरीज मेष राशि.
1: वल आज किस्मत आपको एक बड़ा संकेत दे रही है. प्रॉपर्टी से जुड़ा अटका काम अचानक सुलझ सकता है और आराम में समाज में आपकी पहचान चमक सकती है. बात प्रेम में थोड़ी सावधानी जरूरी है. साथी को नजरअंदाज किया तो दूरी बढ़ सकती है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज का दिन आपके लिए मौके लेकर आया है. कोई नई खरीदारी दिल खुश को कर देगी और परिवार में रिश्ते पहले से मजबूत होंगे. पर घर में नई शुरुआत चाहे वाहन हो या मरम्मत शुभ संकेत दे रही है. लंबे समय से अटकी डील फाइनल हो सकती है. बट सेहत को हल्के में लिया तो परेशानी आप ही की बढ़ेगी.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: भागदौड़ भरा दिन है लेकिन राहत की बात ये है कि मदद खुद चल कर आएगी. क्या बात है. खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. अपने काम खुद करें. दूसरों पर भरोसा भारी पड़ सकता है. बच्चों पर नजर रखें प्लीज. उनकी दिशा सही रखना आपकी जिम्मेदारी है.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: वल आज का दिन परीक्षा ले सकता है लेकिन आप संभालेंगे. काम में फोकस बढ़ेगा और बॉस की नजर आपकी वैल्यू भी और दिल में सहयोग की भावना रहेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी. छोटी छोटी बातें जो है तनाव दे सकती हैं लेकिन परिवार में विवादों से राहत मिलेगी एंड लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव दिखेगा.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आत्मविश्वास आपके सबसे बड़े हथियार है लेकिन मन जो है उसमें चल रही उलझने आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं. सो प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जीत आपकी ही होगी. सेहत खासकर शुगर और बीपी को नजरअंदाज ना करें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: ऑलराइट, आज सेहत पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें. पेट से जुड़े परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं. नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है. अपने रोज अपने राज किसी से शेयर ना करें. कोई फायदा उठा सकता है. फोकस बनाए रखेंगे तो रास्ता खुद बनकर आएगा आपके सामने.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: सुबह की शुरुआत ही खूबसूरती के साथ और खुशखबरी के साथ लेकर आएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. पुराने झगड़े खत्म होंगे और काम की रफ्तार तेज होगी. रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समय पर निभाकर आप सबका दिल जीत लेंगे.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: वराज धैर्य ही आपकी असली ताकत है. मीठी वाणी से आप हर मुश्किल आसान कर सकते हैं. प्रॉपर्टी मामले में भाइयों के से बात आगे बढ़ेंगी. परिवार से आगे बढ़ेंगी आपकी बात. एंड जो है स्टूडेंट्स जो हैं अभी तो आप लोग छुट्टी मना रहे हैं और सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं. और बस आपको वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी बरतनी है वरना परेशानी हो सकती है.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है. जीवन साथी से कुछ भी छुपाना भारी पड़ सकता है. डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. राजनीति या नए काम में हाथ आजमाने का मन बनेगा. बिजनेस में ग्रोथ दिखेगी और पेंडिंग काम भी एकदम से पूरे हो जाएंगे.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: वेल, आज नौकरी वालों के लिए खुशखबरी है. नया पद या प्रमोशन मिल सकता है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली सफलता तय है. प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो हर काम समय पर पूरा ही होगा. बात सेहत को नजरअंदाज किया तो आपको ही समस्या होगी एंड दिनचर्या सुधारेंगे तो लाइफ बैलेंस में आ जाएगी.
2: एक्वेरियस कुंभ राशि.
1: आज का दिन आपको मुस्कुराने की वजह देगा. समस्याओं का हल मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है. कोई अच्छी खबर मिलेगी. नया वाहन लेने का सपना भी पूरा हो सकता है. कुल मिलाकर आज फायदा ही फायदा आपका हो सकता है.
2: पाइसेस मीन राशि.
1: फाइनली आज थोड़ा संभल कर चलना होगा. खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए कंट्रोल जरूरी है. आपके काम आपको नई पहचान दिलाएंगे. बच्चे आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे. अनजान लोगों की बातों में आकर फैसला लेना नुकसान दे सकता है. बट एक शुभ समाचार आपका दिन भी बना सकता है. विशिंग यू ऑल बेस्ट.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:54 और बस 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. सभी बच्चों को हैप्पी हॉलीडेज. एंड बच्चे हैं रिधि, सोनाक्षी, अविनी, क्योदवंश. ये हैं दादी और नानी सुया और नाना लालदेव बिहारी कोंगोमा से. सब परिवार के नाम. कैसी है प्यारी सी प्रेमिला जी प्रेंदी पापा से. पति के लिए है रंजीत एंड आपके पूरे परिवार. हर हर महादेव. मिघा कैसी हैं आप. गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रेंदी पापा. विशिंग हबी सुंदरन 60th बर्थडे. बेस्ट विशेस आपके पूरे परिवार कुवारन तलासी एंड डियर वंस. और हर हर महादेव आपको भी अमृता पॉइंट साबल से आपके पूरे परिवार के नाम.

बस इस बात को हमेशा अपने दिल में बिठाए रखिएगा कि व्हाटएवर यू माइट बी, रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ. और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि काम पर जा रही है, सर्दी लग रही है, तो बस अपना ख्याल रखिएगा. एंड वंस अगेन, बॉन कुराज टू यू ऑल.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
6: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे हैं. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे आदिति नमस्कार आपको.
7: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार. मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी. कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया. हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून मापदंडों के अनुरूप नहीं था. पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन चलने को कहा. हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा. पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए हिंसा से कम और उचित बल का प्रयोग किया है. सरकारी गठबंधन में शामिल अजीतों से अल्टरनेटिव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा. याद रहे कि शुक्रवार को राष्ट्रीय सभा में बजट बहसों के समाप्त होने के बाद फाइनेंस बिल पारित कर दिया गया. 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं. हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही हैं. भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियां, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है. हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं. हमास गुट के निरस्त्रीकरण योजना पर सहमति देने के बावजूद इसराइल की तरफ से 2 सिलसिलेवार रातों के दौरान हमले किए गए. इसराइली ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि गजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए इसराइल तक कोई शांति समझौता नहीं पहुंचा है. आखिर में स्थानीय मौसम का हाल. आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है. उधर मास्करिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होगी. दिन के दौरान आमतौर पर मौसम में सुधार आएगा. दोपहर बाद भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं और ऊंचाई वाले जगहों पर कोहरा छाया रहेगा. रात के दौरान भी इन इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है. हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा. दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है. तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस. साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा.

0: तो ये थी अब तक की खबरें, हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: नहीं नहीं डरेगा नहीं, नीतू आपसे आपकी जान नहीं मांगेगी, बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय हमारे साथ और करीब आ जाएगा आपके मैसेजेस के जरिए. सो वंस अगेन लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग, प्यार भरा प्रणाम. 6:10 ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं, रास्ते पर है. डू लेट मी नो आपके यहाँ मौसम कैसा है, इज इट स्टिल रेनिंग या फिर नहीं, मौसम में सुधार आया है और कभी धूप कभी बारिश कभी थोड़ी सी हल्की गर्मी और कभी और ठंड. तो आप अपना ख्याल रखिएगा. 5:49, 12:94 पर लेट मी विश अ लवली मॉर्निंग टू यू ऑल.
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: So yahan par message kehta hai, please a special song to Vishal of Lal Mati. Aaj unka birthday hai, wishes pata nahi kin ki taraf se, lekin koi to special hoga, hogi, jo bhi ho, aap hamare saath jude hain. Thank you. गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको बॉम्बू से थानेश्वर जी, प्यारी पत्नी सुनीता, साथ में है संजीव, रेखा, निशा, दविदस परिवार. हैव अ ग्रेट डे अहेड. गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग. यहाँ पर है कौन? ओके, आप है रेखा एंड आपके पूरे परिवार. इंदिरा उसे नीपति वैजे से हैं और सविन दसाराम का जन्मदिन है आज, और उनको श्याम, बीना, जसप्रीत, बीनो, वंदना, अविको, वंदना, गर्व, कांति, राजीव, पूनम, प्रिशा, ईशा, क्रिश, मीना, सीमा, अश्विन, सत्यानंद, सावित्री, सोनम, अभिषा, दासाराम एंड रागुलाम परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. ललित एंड जीत इन फैमिली, जॉगिंग एंड म्यूजिक, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सो एंजॉय. नमस्कार नीतू एंड RM2 रेडियो मस्ती टीम, थैंक यू सो मच. नमस्कार हेमलता, आप हो पुएर्टो पिमोसे एंड भजन फैमिली, कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप कैसी हैं? सब कुछ ठीक ठाक है, वेरी गुड. हबी विश्वानंद, बेटियां वर्षाली, वर्षिका और वर्षिना, दिव्यांशी, युवांश, ग्रैंड चिल्ड्रन है सोनिन लो, अभिनव एंड शिव, सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं, और ये महीना सबके लिए बहुत ही शुभ हो. आपने सबके लिए मांगा, आपका प्यार सबके लिए है, तो ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की तरफ से आपको भी और परिवार. गुड मॉर्निंग ओ जस्वी, लव आंशी, मारिता, बल्कि मारती है, अरे बाप रे बाप, ममा है दीपा एंड सब परिवार के नाम. सो कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस ऑन 5:49, 12:94. चलते चलते हबी रवि आपके नाम, बेटी दोषिका, साथ में है त्वेशा फ्रॉम गी वीना गंगा एंड आपके पूरी परिवार कहाँ से, फ्रॉम मोताबा.

Love you too, lovely people. चलिए कैसे हैं आप? Wishing my brother in law Akash Darsan happy birthday. ये हैं दर्शन सुहराय, सुनक सिंह पामिसा, होराधन, बुधु और सिबालक परिवार की ओर से. A very good morning Akash and Mansukh family from Bombay. गाने तो आपको मस्त अच्छे लग रहे हैं. Thank you. Happy 12th birthday to Princess Diasna. रामनाथ ऑफ पालमो इटली, दिनेश दीवा साथ में है, रविश प्रिशा लवशाइन सभी डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार. लवली मॉर्निंग टू यू टू. यहाँ पर विशिंग ओ

पायस सावन सोमवार फर्स्ट सावन सोमवार चलिए प्रिया पावन पूजा गीता रितिका गुड लेंस से हाय नीतू वरुणा हिया कैसे है माय डियर फ्रेंड ठीक ठाक बेटी हेमिंग की अ गुड डे विश कर रही है एंड फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी सो ब्लेसिंग्स टू हर एंड बोकुआश बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम पापा महेश भाई युवेश एंड पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार अगला गाना आपके लिए भी चलाते हैं यहाँ पर है कौन कुमारी दौथल एंड गुड मॉर्निंग आपको शाम एंड डी बिचन फैमिली

ओहो 6:26 ऑलरेडी। तो चलिए वक्त का इशारा है कि बस थोड़ी देर में यानी कि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, देन उसके बाद इन मॉर्निंग बीट विदिता आपके हम सफर बन जाएंगी। कल मुलाकात होगी 12 से 2 के बीच। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पेंशन सुधार के विरोध में मंगलवार से राष्ट्रीय सभा में के सामने धरने पर बैठी मालिना श्रीनिवास को कल पुलिस ने हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया गया। रेजिस्टेंस से कल्टेना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप का खंडन किया। 8000 यूनिट वाली सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी नहीं जा रही। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। कल से कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल जॉन मोजेओ संस्था के साथ मिलकर बोबासा में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को संबोधित है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर बाद उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया। हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानूनन मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्टेशन चलने को कहा। हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना हिंसा के कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस से कल्टेना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर सहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा है। याद रहे कि शुक्रवार को राष्ट्रीय सभा में बजट बहसों के समाप्त होने के बाद फाइनेंस बिल पारित कर दिया गया। 8000 यूनिट्स वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आतंकिया वाले अशिता रघु।
1: मॉरिशस में आवास निर्माण परियोजनाओं को लेकर प्रगति जारी है। 14 स्थलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुद्दो, रिश्ते और मौदालबेय में 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी आवास का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी वह तुरंत रहने योग्य नहीं हो जाता। कुछ स्थलों पर अभी पानी, बिजली और टेलीफोन सेवाओं के कनेक्शन का काम पूरा किया जाना बाकी है। इसके अलावा सड़कों, नालियों, पट्टों और आवास उपयोग की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाएं भी लंबित हैं। देरी के कारणों में कुछ ठेकेदारों की विफलता, न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण भुगतान में रुकावट और केबल, दरवाजों तथा अन्य उपकरणों की चोरी भी शामिल हैं। स्थिति को सुधारने के लिए बालिसों, रियोंबेल और तायाक परियोजनाओं के कार्य नए ठेकेदारों को सौंपे जाएंगे। वहीं संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत जारी है और

0: निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। काम और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही लाभार्थियों को घरों की चाबियां चरणबद्ध तरीके से सौंपी जाती रहेंगी।
1: कल से क्रक यानी कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल मोर्जियो जॉन मोर्जियो संस्थान के साथ मिलकर बोबासे में एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। स्नातक कानूनी विशेषज्ञ धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। आशीतरा को
0: अन्य लोगों के लिए हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध होगा, जिससे सरकार वित्तीय व धार्मिक संस्थाओं और पूर्व उपनिवेशी देशों के बीच समझौता वार्ता शुरू हो सके। यही इस सम्मेलन का लक्ष्य है।
1: और मुआवजे पर बहसों से परे गुलामी की कुछ ऐसी दर्दनाक अवशेषों पर ध्यान दिया जा रहा है जो आज भी समाज में दिखाई देते हैं, खासकर कुछ शर्मनाक नामों या उपनामों के जरिए जो कभी मालिकों द्वारा अपने गुलामों पर थोपे गए थे और जिसका बोझ पीढ़ियों से कुछ लोग ढोते आ रहे हैं। आशीतरा को
2: Dans commission justice et vérité, sa première recommandation demande à l'État, à toutes les autorités de présenter apology. Deuxième
0: ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशन के अंतर्गत पहली सिफारिश के अनुसार सरकार और सभी अधिकारियों से क्षमा याचना करने की मांग की गई है। दूसरी सिफारिश में मेमोरियल है, यानी आज हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय गुलाम संग्रहालय है, पर क्षमा कभी मांगी नहीं गई। ये सच है कि ब्रिटिश राज्य द्वारा ये सब किया गया था, पर आज भी हमारे पहचान पत्र में उन सभी पुरुषों और महिलाओं का नाम शामिल है जो नुकसानदायी है। अतः हम अपने पारिवारिक नाम का त्याग नहीं कर सकती हैं, इसलिए सरकार को इसका भुगतान करना होगा।
1: पोर्ट लुई के डायोसीज ने कल रोजिल के सेंट मेरीज कॉलेज में वोकेशंस फेस्टिवल के 14वें संस्करण का आयोजन किया। इस सालाना कार्यक्रम का मकसद है नौजवानों और परिवारों को गिरजाघर में अपनी धार्मिक सेवा की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करना और साथ ही धार्मिक सेवा के लिए प्रशिक्षण ले रही लोगों की ट्रेनिंग में मदद देना। महिला कैदखानों में सजा काट रही महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किन्वेते नामक गैर सरकारी संगठन की मिलीजुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट्री मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोविना सोफी, आशिता रघु।
0: महिला कैदियों के पुनर्वास की तैयारी में कौशल विकास प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य रिहाई के बाद उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। किन्वेते संस्था की प्रतिनिधि निशिका पादयाची पायंदी, जो बंदियों को कारावास से लेकर उनके पुनर्वास तक सहयोग प्रदान करती हैं, का कहना है कि ये पहल पहले ही सकारात्मक परिणाम दे चुकी है। इस प्रशिक्षण से इन्हें नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, जिसके बाद पुनः अपराध करके ये वापस जेल में न आएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। कई सफल कहानियां हैं। हाल ही में एक महिला जेल से छूटी थी, हमने उसकी मदद की है ताकि वह अपने यहाँ एक ठेला खोल सके जहाँ गांव में सब्जियां बेच रही हैं और इसकी वहाँ पर बहुत आवश्यकता भी थी। महिला बंदियों के लिए ये प्रशिक्षण केवल कौशल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत करने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी है। इनमें से कुछ महिलाएं जेल से रिहा होने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की योजना भी बना रही हैं। ये सभी प्रशिक्षण बहुत फायदेमंद है, जहां थोड़े पैसे में अपना एक व्यवसाय शुरू कर पाऊंगी। मुझे खुशी है कि यहां से निकलने के बाद मुझे पता है कि मैं क्या करने वाली हूं। जेल में प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने सिलाई के प्रति रुचि भी विकसित की है। बंदियों को उनके इस सफर में जेल अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। लीड प्रिजन ऑफिसर जेनिफर कांजी, जिन्होंने

0: स्वयं कृषि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब अपना अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा कर रही हैं। वहीं बृंदा बक्ता वो लगभग 10 महिला बंदियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही है। फिलहाल हम महिलाओं के लिए अंडरगार्मेंट और पैजामा बना रहे हैं। इस परियोजना के तहत हमें 2 मशीन भी प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण के बाद ये सफलतापूर्वक एक अंडरगार्मेंट भी बना पाएंगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला बंदियां केवल नई कौशल ही नहीं सीख रही हैं, बल्कि उन्हें जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। ये पहल उन्हें रिहाई के बाद एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान कर रही है।
1: सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोजिसी डॉ पर्पल को पूरा करने में 3 साल लगे, जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह सेशल्स और मॉरिशस में पाई गई, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई। इसके लिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में थे, जिन्होंने शागोसवासियों के मुद्दे पर समर्थन दिया है। इसके लिए उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था। इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है। कैंडी मौका, यशना मिश्रा।
2: L'Odyssée d'un peuple mauricien, निर्देशक सिल्वन नायडू की फिल्म है। उन्हें इस फिल्म का विचार COVID-19 महामारी के दौरान आया। फिल्म की शूटिंग सेनेगल में एक जहाज पर की गई। फिल्म के कुछ दृश्यों को और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया।
3: Alors, il faut savoir que l'histoire se passe entre les Chagos, Seychelles, Maurice.
2: शागोस सेशेल्स मॉरिशस के बीच की कहानी है, युद्ध की भी कहानी है। हमें लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जाना पड़ा बयान लेने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सिल्वन नायडू शागोसियों की स्मृतियों को संरक्षित रखना और उनकी कहानी नई पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि शागोस पर आधारित हर रचना इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विषय पर हर एक फिल्म इस संघर्ष में योगदान देगी। ये फिल्म एक अनकही दास्ता है। ये 5 घंटों की फिल्म हो सकती थी, जिसे 2 घंटों का बनाया गया है। एक कहानी जो लोग जानते हैं। उनकी कई परियोजनाएं जारी हैं, जिनमें नेल्सन मांडेला के नाम विनी मांडेला के पत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री शामिल है।
1: तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा, परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। आज इसके 18वें दिन को आदि पेरो को मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। ये विशेष रिपोर्ट अशिता रघु के साथ।
0: नदी की शांत धारा के किनारे आज श्रद्धा और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच महिलाएं प्रकृति को नमन करते हुए अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर रही हैं। विवाहित महिलाओं के लिए आदि का ये पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन वे अपनी ताली यानी वैवाहिक मंगलसूत्र को बदलती हैं, जो वैवाहिक जीवन की पवित्रता, पति की लंबी आयु और परिवार के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अंबिके कहती है,
4: मेरे
2: लिए इस पर्व और इस ताली का बहुत महत्व है, जो मेरे और मेरे पति के बीच के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। आज मैं आमिन की यहाँ इस पवित्र धागे को हल्दी से पवित्र कर आमिन का आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूँ। मेरे विवाह को 38 साल हो चुके हैं और हर साल मैं ताली बदलने आती हूँ।
0: आज नदी किनारे कई दंपत्तियां आए हुए हैं, जो अपने विवाह के समय लिए गए वचनों को पुनः दोहराएंगी।

0: रागिनी अच्छिनापियल कहती हैं,
1: पुनुसन गौसू पुनुसा
0: हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह हम नदी किनारे जाकर ताली बदलेंगे। मेरा पति वैसे ही ताली बांधेगा जैसे विवाह के समय किया था। अपने विवाह के वचनों को पुनः हम दोहराएंगे, कोविल में जाकर पूजा करेंगे और शाम के समय हम परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। आज का ये अनुष्ठान केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी माध्यम है। बुजुर्गों का कहना है कि ऐसी परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखती हैं। आया सूर्या कहते हैं,
2: आदि से ले quatrième mois du calendrier tamoul donc aujourd'hui chez toi l'île maurice ne peut célébrer adi padine tam perku vida
3: adi तमिल कैलेंडर का चौथा महीना है। आज विशेषकर मॉरिशस में आदि मास का अठारवा दिन यानी आदि पेदिनेतम पिरक वीर है, जहां हम प्रकृति, नदियों की समृद्धि व महत्व, कृषि तथा परिवार के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। अतः आदि पेदिनेतम पिरक वीर विश्वास, कृतज्ञता, मानवता और प्रकृति को समर्पित एक पर्व है।
0: नदी की अविरल धारा की तरह ये परंपराएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए आदि का ये वार्षिक अनुष्ठान आस्था, परिवार और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है।
4: बर्तन अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ग्रीस में जंगलों में लगी आग बुझाने के अभियान में कार्यरत दो हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर में दो क्रू सदस्यों की मौत हुई है। ये हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ी दूरी पर पेश आया। हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर्स टकराने से एक में आग लग गई जबकि दूसरे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। हमास गुट की निरस्त्रीकरण योजना पर सहमति देने के बावजूद इसराइल की तरफ से दो सिलसिलेवार रातों के दौरान हमले किए गए। इसराइली ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि गजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए इसराइल तक कोई समझौता, शांति समझौता नहीं पहुंचा है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे कुछ बादल हमारे इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। उधर मस्कलेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद इन इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय हुआ। शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा। समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पेंशन सुधार के विरोध में मंगलवार से राष्ट्रीय सभा के सामने धरने पर बैठी मलिना श्रीनिवास को कल पुलिस ने हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया गया। सिसौन से कौतनाचीव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप का खंडन किया। 8000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। कल से कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल जॉन मोजियो संस्थान के साथ मिलकर बोबासे में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत।

0: देश विदेश की खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। क्लेफो नंबर तीन वाक्वामी 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री जय प्रकाश गोबिन जो प्रकाश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान क्लेफो नंबर तीन वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सल्फियाहीन योगी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 10:30 AM। सेंट जोसेफ रोड तेरोज में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड श्री भगवान दास विदेशी जो आनंद मोशो लेग्यूम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती जयवंती विदेशी के मकान सेंट जोसेफ रोड तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बहुमशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 3:30 PM। काशीनाथ रोड पोस्ट ऑफ लाख में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्णलाल बालरूप जो देवानंद नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान काशीनाथ रोड पर दुफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 12:30 PM। पावे रोड पे चिराफे में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिदवंती गोखुल पैदाशी नाम भोला जो बिदवंती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री रामानंद गोकुल के मकान पावे रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। जयपाल रोड प्लेंदी पापाई में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री यशवंत कुमार सीयू जो धीरज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती प्रीति सीओ के मकान जयपाल रोड प्लेंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 12:30 PM। ब्रांच रोड बोनाकई में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रेमिला मिथु पैदाशी नाम सुब्रन जो रितु नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के सवा दो बजे इनके पति श्री विवेकानंद मिथु के मकान ब्रांच रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चैकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 12:15 PM। नंबर 35 अबेलावाल गलियों खुले में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड जनाब शेख कासम महमूद अली जो बाय कासम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा सुबह साढ़े दस बजे इनके मकान नंबर 35 आबिलावाल गलियों खुले से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए इत्तेफाक़ उल मुस्लिमीन मस्जिद दे जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टू डेट 10:30 AM। क्लेमेंसिया रोड बेलेरिविया सेशमी 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस पैदाशी नाम अर्कू जो सोना मगाजिन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनके बेटे श्री कैलाश रामनोरिस के मकान क्लेमेंसिया रोड बेलेरिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM। कॉम्बिलेन नंबर दो ऑयता में 67 साल के 67 ईयर्स

और श्री मुखराज नंदू, श्री मुखराज नंदू जो राज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती ओत्वानित नंदू के मकान कौबिले नंबर 2 औयता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डी एट 2 PM नेहरू रोड कौन हुए थे 52 साल के 52 years old श्री विनोद मंगरू इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे के मकान नेहरू रोड गौन होता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चकी शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 11:30 AM रॉयल रोड क्लूनी में 94 साल की 94 years old श्रीमती आचामा रामास्वामी पैदाशी नाम नगादू जो अमाम नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे तोम्बू रामास्वामी के मकान रॉयल रोड क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM जुवांस डेपिने में 68 साल के 68 years old श्री आनंद नमोल जो सनातन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। कि अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके बेटे श्री राज नमोल के मकान रुवांस देपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बमा शौकी शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 10:30 AM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:07 और हम साथ साथ है. मंडे 3 अगस्त. देखा अभी जुलाई जुलाई कर रहे थे, अगस्त आ गया ना. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ. और हम यहाँ पर मस्ती करने आते हैं एवरी मॉर्निंग. एक दिन में ऐसा नहीं होता कि हम आपको ऐसी अकेले छोड़ दें. हमारा काम होता है आपकी ज़िंदगी में मस्ती लाना और आपकी ज़िंदगी से टेंशन को दूर करना. बस छोटी सी हमारी कोशिश होती है. उम्मीद करती हूँ कामयाब हो ही जाते हैं हम. चलो भाई, बहुत सारे गेम हैं. आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत सारे गेम हैं. तो ऐसा करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे हम फिर मिलते हैं. और यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए तैयार हो जाइए. विनीता का साथ है, मॉर्निंग बहुत खूबसूरत है. वेलकम टू मॉर्निंग बीट
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा. अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए. आप तोहर अप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा. सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला. और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला. जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाय. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
4: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट.
5: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vignes plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui danse l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter.
4: Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited. Oh,

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, मैं तो कहती हूँ कि बस तू ही तू। चलो 7:14 हो गए हैं और यहाँ पर 13 हो गया, अभी 14 हो गया। तो चलो आपके लिए हम सवाल लेकर आए हैं और यहाँ पर अगर आप हमें सही जवाब देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा क्या? एमबीसी के साथ खेलने पर आपको मिल सकता है गिफ्ट वाउचर वर्थ 500 rupees ऑफर टू यू बाय विनर्स। जी हाँ, विनर्स की तरफ से आपको मिलेगा क्या, 500 rupees का गिफ्ट वाउचर। अभी मुझे आपको क्या कहना है, एक सवाल पूछना है जिसका जवाब आप देंगे, ठीक है?

आपको मुझे बताना है अंटिल 4th August, अंटिल 4th of August यानी 4 अगस्त, व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रोमोशनल प्राइस ऑफ शॉपी नॉन अल्कोहलिक स्पार्कलिंग 750 ml एंड ओके, आपको मुझे बताना है अंटिल 4th of August व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रोमोशनल प्राइस ऑफ शॉपी नॉन अल्कोहलिक स्पार्कलिंग 750 ml. ओके

0: 491294 पूरे नाम और पते के साथ।
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: ठीक है भाई, तो जब तक हम आपसे कहेंगे डांस करने को तो आप कर लोगे?
1: कैसे करें? सी से
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
0: आंटी पता नहीं कहां से आ गए, कोई बात नहीं जी, हम हैं आपके साथ. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. और यहां पर भाई इतने सारे जवाब आए हैं, इतने सारे लोगों के नाम नोट करना और फिर उसके बाद लकी ड्रॉ के लिए डालना थोड़ा सा हमारे लिए भी खतरनाक हो जाता है भाई. चलो कोई नहीं, यहां पर भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. सबके नाम किसी को मिस नहीं किया ना, देखो भेज दिया ना. हाँ चलो ठीक है, सबने भेज दिया, सबका नाम आ गया. अब लकी ड्रॉ करने का टाइम आ गया है. हमने आपसे था, हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था कि अंटिल 4th of August व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ चम्पी नॉन अल्कोहलिक स्पार्कलिंग 750 ml. और सही जवाब है 181 rupees. ये है नॉर्मल प्राइस. प्रमोशनल प्राइस है 121 rupees 95 cents. सो यहां पर काफी सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है, लकी ड्रॉ कर लिया हमने. तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे विनर हैं और वो हैं वरुणा अनंत. वरुणा अनंत कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और मैं आपको बताऊं कि आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 rupees का वाउचर. और ये वाउचर जो है आप को पोस्ट कर दिया जाएगा. डोंट वरी, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको कॉल करेंगी और आपको बता देंगी कि सारे जो डिटेल्स हैं और आपके भी डिटेल्स ले लेंगे. चलो समय हो गया है 7:22. विदित आपके साथ आपके अपने मॉर्निंग बीट में. कंग्रेचुलेशंस जिसकी जीत हुई, बाकी हमारे गेम के साथ जुड़े रहे.
2: मॉर्निंग बीट
3: RM2 Radio Musti in the mix.
0: Don't forget to send in your messages on 549 on 1294. थोड़ी देर में करेंगे बर्थडे सरप्राइज. किसी का बर्थडे है तो जल्दी करो, उनका नाम और फोन नंबर भेजो भाई.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: हाँ सुनीता, सुनीता नमस्ते. सुनीता
3: वी मोती
2: वी गे कहाँ हुई गे सुनीता? सुनीता फोन काट देगी भाई. सुनीता इससे पहले फोन काट दे, उनको सरप्राइज करी कर देते हैं.

0: रेडियो मस्ती।
1: एक्चुअली सुनीता ने फोन काट दिया क्योंकि सुनीता डर गई कि उनको किसने फोन किया। बेचारी हाउसवाइफ है, घर पे रहती, उनकी बेटी ललिता ने बोला था उनका सरप्राइज करने के लिए, लेकिन शायद उनको पता नहीं चला कि इतने टाइम से कौन उनसे, पता है किसी को ऐसे होल्ड पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। और सुनीता जी से बात करना था। हेलो सुनीता जी।
2: हेलो
1: सुनीता जी,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते सुनीता जी, हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। आपने तो हम फोन ही काट दिया सुनीता जी, क्या डर गई?
2: नहीं नहीं, हमको मालूम नहीं था, हमने सोचा कि हमारे मौसी फोन कर रहे हैं, तो बाद में जाना कि रेडियो में फोन कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, बाद में पता चला आपको, लगा मौसी
2: जी।
1: अच्छा जी, ये मौसी कौन है?
2: मेरी मौसी है, मेरी माँ का बहन।
1: वही, क्या नाम है
2: उसका? नाम है जया।
1: जया, तो आपको लगा कि जया मौसी ने फोन किया, लेकिन यहाँ पर मौसी नहीं, यहाँ पर आपको नानी ने फोन किया था। चलो
2: ठीक है।
1: सुनीता जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
2: थैंक यू।
1: लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको एक वाउचर मिल रहा है। लोलो हाइपरमार्केट रोज यहाँ पर किसी न किसी को सरप्राइज करते हैं, उनको एक वाउचर देते हैं जो आपको आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी बेटी ललिता ने आपको सरप्राइज करना चाहा तो वो भी आ सकती हैं आपके आईडी के साथ और यहाँ पर आपका वाउचर कलेक्ट कर सकती हैं, आज नहीं तो कल। आपके पास सिर्फ दो दिन है, सो आपको पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
2: थैंक यू
1: जी, बाय बाय, नमस्कार।
2: bye-bye.
1: तो भाई ये थी हमारी सुनीता जी, हमारी बर्थडे गर्ल। ललोरो हाइपरमार्केट की तरफ से इनको सरप्राइज किया गया, लेकिन इन्होंने हमें झटका दे दिया और फोन काट दिया। एनीवे ऐसा होता है। खैर, आप अगर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं तो अपने डेडिकेशंस भेज सकते हैं। बाय द वे,

थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की ओर, अरविंद का है इंतजार। चलिए मिलते हैं इस गाने के बाद अरविंद के साथ। You're listening to Morning Beat Vinita के साथ। Good morning and welcome। कैसे हैं जनाब? चलो जहां से भी सुन रहे हैं, please do send me your message on 549 and 1294।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: And yes, Commonwealth Games खत्म. चलिए जानते हैं किस देश ने कितने मेडल्स जीते. आ गई हैं पूरे अपडेट्स के साथ हमारे दोस्त अरविंद. गुड मॉर्निंग अरविंद.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. कॉमनवेल्थ गेम्स को अलविदा. 10 दिनों के राष्ट्रमंडल खेलों का कल समापन हुआ. फाइनल मेडल टेबल में 215 गोल्ड मेडल जीते गए. ऑस्ट्रेलिया शुरू से अंत तक आगे रहा 70 गोल्ड मेडल के साथ. टोटल 171 मेडल्स दी कंगारूज के नाम. इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पे आया 29 गोल्ड मेडल. 29 गोल्ड मेडल्स टोटल 110. कनाडा तीसरे स्थान पे 19 गोल्ड मेडल. 19 गोल्ड मेडल्स टोटल 62. और चौथे स्थान पे सम्माननीय स्थान टीम इंडिया के लिए 13 गोल्ड मेडल टोटल 39. मॉरिशस 15वें स्थान पे आया 1 गोल्ड मेडल टोटल 4. 74 देशों में 15वां स्थान लेना मॉरिशस के लिए सम्मान की बात है. मॉरिशस के लिए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स यादगार रहेंगे, खासकर जब 28 साल बाद गर्व के साथ राष्ट्रीय धुन हमारा नेशनल एंथम सुनने को मिला. रेमी फेये हमारा गोल्डन बॉय बना. नोएमी अल्फोंस डबल सिल्वर और मेवे क्लेयर का बॉक्सिंग मेडल. बधाई हो. कई रिकॉर्ड बने, ऐतिहासिक पल रहे, हिस्टोरिक इंडिविजुअल एंड नेशनल माइलस्टोन्स. वेल्स की साइक्लिस्ट एमा फिनुकेन अकेली 4 गोल्ड मेडल जीत पाई. साउथ अफ्रीका का स्विमर 21 कॉमनवेल्थ गेम्स. इंडिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर मेडल. और फिर बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, मॉरिशस के 4 मेडल जिन्हें कैबी फेये का स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल रहा. क्लब फ्रेंडरीज में लिवरपूल की हार हुई. लिवरपूल लीड्स के खिलाफ हार गया. द रेड्स हाफ टाइम में 2-0 से आगे थे. चैंबर्स और वर्ड्स का एक ही गोल. पर सेकंड हाफ में लीड्स की वापसी. कालवर्ट लेविन का डबल. आरोनसन और लॉन्गस्टाफ ऑन टारगेट. 4-2 से लीड्स की जीत और लिवरपूल के मैनेजर इराओला की पहली हार. फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स के अच्छे परफॉर्मेंस रहे. पर सेकंड हाफ में सेकंड टीम का डिफेंस कालवर्ट लेविन जैसे अनुभवी नामी स्ट्राइकर के सामने टूट पड़ा. इधर टोटनहम हॉटस्पर ने चेल्सी को 1-0 से हराया. रिचार्लिसन का गोल. अन्य मैचों में आयक्स की जीत हुई 3-1 से वोलेंडाम टीम के खिलाफ. फेयेनूर ने 2-1 से अटलांटा को हराया. गलातासराय 3 रेन 3.

0: Burnley 0, Torino 8, Sunderland 8, Wrexham 0. Scottish Premiership में first phase में St. Johnstone 4, Kilmono 3, Hibernian 8, Motherwell 2. रेंजर्स ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था जबकि आज सेल्टिक की एंट्री होगी डंडी के खिलाफ। फ्रांस न्यूज, अर्जेंटीना का इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल मिडफील्डर वालेंटिन बारको चेल्सी में आएगा। स्ट्रासबूर से उसे साइन किया गया। वर्ल्ड कप में सब्स्टिट्यूट था पर इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के बाद बारको और जूड बेलिंगम रेसलिंग करने लगे थे, इसीलिए बारको फेमस हुआ। टोटनहम हॉटस्पर विक्टर ओसिमहेन के लिए 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भेज रहा है गलातासराय के यहाँ और ब्रूनो गुमारेस आर्सेनल के यहाँ मेडिकल पूरा करने वाला है, फिर 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रांसफर हो सकता है। इधर मोहम्मद साला तुर्की की ट्राबजोंस्पोर टीम के करीब है, इससे पहले बेसिकतास में जाने वाला था पर अब ट्राबजोंस्पोर उसे साइन करने के लिए फेवरेट है। बायर्न म्यूनिख मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को को साइन करना चाहता है। इधर एस्टन विला और इंग्लैंड के डिफेंडर एज्री कोनसा आर्सेनल में जाना चाहता है। चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर और न्यूकासल यूनाइटेड तीनों अटलांटा के सेंटर बैक जोजो स्काल्विनी के पीछे हैं और लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान में जाना चाहता है। लिवरपूल ने उस पर 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है। लोकल स्पोर्ट्स में रीजनल फुटबॉल, रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल सिलेक्शन प्लेन दे रोश ने ट्रियोले कैडेट्स को 5-0 से हराया, पांचों गोल पुष्कर दमरी की ओर से। इधर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के दूसरे सप्ताह में मैच नंबर 2 में कॉन्टिनेंटल चीतास की जीत हुई 2 विकेट से एपीपी लियोपार्ड्स के खिलाफ। प्लेयर ऑफ द मैच कीगन केपनर रहा। मैच नंबर 3 में वन हेल्थ जगुआर जीत पाए टोमास कुक टाइगर्स के खिलाफ 5 विकेट से। मैच का सज्जन मैन ऑफ द मैच रहा रजन। That's it, the latest from the sports world. एक बार फिर ब्रावो, बधाई कहेंगे हमारे एथलीटों को जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आए और ये ऐतिहासिक गोल्ड मेडल यादगार रहेगा। ऐसे ही मेडल जीतते रहेंगे और मॉरिशस का नाम रोशन करते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lanso extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies. Des pieds pas 4 pieds pour 295 roupies.

0: चलो जी यहां पर मॉम शालिनी का बर्थडे है तो रिचार्ज स्नेहा उनको प्यार भेज रही हूं। वहीं पे पूजा लक्ष्मण बिल भी मोबाइल से हैं, कहते हैं कि भाई कौशिक राम खिलावन का बर्थडे है, रहते लावोचे उनको विशेष भेजना है। वहीं पे रेशमा गोविंद आपको हैप्पी बर्थडे आपके हस्बैंड की तरफ से। एक और मैसेज आया है, प्रणाम बेटी वंडरफुल शो, थैंक यू सो मच जी आपके इस प्यार के लिए।
1: Moments that matter with Seekum.
2: जीवन के सबसे खूबसूरत पल स्क्रीन के आगे नहीं बल्कि उस सब जना संगे जियल जाला जिकरा हमने खुशी रहिला जा। यही खातिर सिकोम लगे जिंदगी के आसान बनाए खातिर डिजिटल माध्यम अपनाई ले है जा, जिकर से आप सब औसन पल जस्ती बिताए जोन तोहर खातिर जस्ती मायना रखेला। एगो कुताशो खोजा था वो बस कुछ क्लिक में तैयार हो जाए, अपन प्रीमियम के पैसा चुकाए खोजा था वो ये आसान बा। आप सब हमनी के ऑनलाइन पेमेंट के सुविधा से हाली से आर बिना डरे एकदम सुरक्षित तरीका से ऊ चुकाए। अपन पॉलिसी देखे के हो या अपन अप्लिकेशन कहाँ पहुँचल बाटे ये जाने खोजा था वो आप ये सब कहूँ से कबो भी अपन सुविधा के अनुसार करे सकब। सिकोम के डिजिटल सेवा की एक के गो मकसद है तोहर पूरा अनुभव आसान सीधा और बिना कोनो झंझट के बनाए के, काहे कि सबसे नीमन टेक्नोलॉजी उहे है जो तोहर जिंदगी के उस सब खास पल के पूरा आनंद ले के समय दे जो सच्चाई में मायना रखेला। इमे नियम आशर्त भी लागू बा, सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Seekum.
3: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août. Depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Bouclima, La Flora.
4: RM2 Radio Musti.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: चलिए इस गाने के साथ बढ़ते हैं हम 8 बजे के समाचारों की ओर। मिलते हैं उस पर आप ही के प्रोग्राम के साथ जो कि है मॉर्निंग बीट।

0: नमस्ते पेश बा भोजपुरी के समाचार मंगर के माली नाशी निवास अपन कुत्ता के संगे राष्ट्रीय सभा के सामने पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एगो टेंट लगा के धरना परी बैठल रहल। कल दोपहर सार्वजनिक रास्ता परी बाधा पैदा करके आरोप परी पुलिस ओकरा हिरासत में ले लक आर वैन में बिठा के ओकरा ले जावल गल। हालांकि थोड़ा बखत बाद ही ओकरा रिहा कर देवल गल। बकीर ई घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ था। पुलिस के अनुसार युवती के टेंट कानून के मापदंड के अनुरूप नहीं रहल। पुलिस अफसर लोग ओकरा आवश्यक कार्यवाही खातिर स्टेशन चले के बोलन जा। हालांकि जब उ लोग उ सहयोग करे से इनकार करलक तो उ लोग के ओकरा पुलिस के गाड़ी में बिठावे के पड़ल। पुलिस के अनुसार उ लोग एकर खातिर बिना कोनो हिंसा के आर कमती से कमती उचित बल के प्रयोग कर लें जा। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस से कौतना चीफ पुलिस के ई हस्तक्षेप पर असहमति जतैले बाटे आर एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के उल्लंघन बोलले बा। याद रहे कि सुख के राष्ट्रीय सभा में बजट बहस की समाप्त होला के बाद फाइनेंस बिल पारित कर देवल गेल है। 8000 गो यूनिट होला सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थल में से 14 गो के काम पूरा हो गल बाटे जबकि 3 गो अन्य परियोजना निर्धारित बखत के अनुसार चलता। हालांकि एकाध गो कारण से लाभार्थी लोग के नवा मकान की चाबी सौंपे खातिर देरी हुआ था। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर लोग देने से एकाध गो खामी बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इस सब स्थल पर ही तोड़फोड़ के घटना जैसन समस्या के कारण ऐसा हुआ था। बकीर वो आश्वासन दिले हुआ कि समाधान खातिर काम हुआ था। नवा कॉन्ट्रैक्टर लोग के काम सौंपल गल है आर संबद्ध स्थल पर ही सुरक्षा बढ़ावल जाता। काल से क्राक यानी कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कॉर्डिनल जॉन मोजेओ संस्थान के संगे मिल के बोवासे में गो संगोष्ठी के आयोजन करता। इस सिंपोशन गुलामी की याद आर भावी पीढ़ी लोग पर ही एक असर के समर्पित है। स्नातक कानूनी विशेषज्ञ आर धार्मिक प्रतिनिधि लोग तथा सिविल सोसाइटी के सदस्य लोग गुलाम बनावल गल आदमी लोग के आर ओ लोग के आवत पीढ़ी खातिर क्षतिपूर्ति आर सम्मान के तरीका पर विचार करे के वास्ते कत्र होत हुआ जा। मुआवजा पर ही बहस से पड़े गुलामी के एकाध गो ऐसा दर्दनाक अवशेष पर ही ध्यान देवल जाता जे आज वो समाज में दिखाई देवेला। खासकर एकाध गो शर्मनाक नाम और उपनाम के जरिए जे कबो मालिक लोग देने से अपन गुलाम पर ही थोपल गल रहल आज जेकर बोझ आजो के पीढ़ी संभालता। महिला कैदी लोग में महिला कैद खाना में सजा काट महिला कैदखाना में सजा काटे होला महिला लोग के जीवन में दूसर मौका देवे के मकसद से एगो प्रशिक्षण प्रोग्राम चलावल गल है। 31 जुलाई से शुरू होल ई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन्स सर्विस आर किनुएटे नामक सरकारी गैर सरकारी संगठन के मिलल जुलल पहल रहल। एकर तहत लगभग 40 को महिला कैदी लोग के हेयर ड्रेसिंग सिलाई पेस्ट्री मेकिंग आर खेती बाड़ी आदि क्षेत्र में प्रशिक्षण देवल गल है। दूसरा देश के खबर में ग्रीस में जंगल के आग बुझावे के अभियान में कार्यरत दूगो हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर होल बा। एकर से दूगो क्रू सदस्य लोग की मौत की खबर बाटे। ये हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ा दूरी पेश आयल बा। एगो हेलीकॉप्टर में आग लगल और दूसर के इमरजेंसी लैंडिंग करे के पड़ल। दूसर दिन इसराइली ताकत लोग दिन से गजा पर ही कर रहल हालिया हमला में कम से कम 13 जना की मौत की खबर बाटे और ओकर में कई को लेका लोग शामिल हवन जा। तय रहल भोजपुरी की समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: भैया आपको हमारे दिल में गोल डालने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। सुबह के 8:09 मिनट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मंडे 3 अगस्त, महीना आ गया अगस्त का। यस लियो, इट्स टाइम टू रोर। म्याओ, हमारी तो म्याओ ही निकलती है। चलो आपका हम वेलकम करते हैं आप ही के अपने रेडियो मस्ती पर। मॉर्निंग बीट में यहाँ पर शुरू हो गया है हमारा ये मस्ती, तो हम कर ही रहे हैं। वैसे आप भी काफ़ी मस्ती कर रहे हो, आपके मैसेजेस मिले हैं, मुझे पढ़ती हूँ थोड़ी देर में। चलिए इसी के साथ ये जान लेते हैं कि आज पूरा दिन मौसम कैसे रहने वाला है। मिलते हैं अदिति से।
4: आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। उधर मास्करेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार

0: आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम में सुधार आएगा। देर दोपहर बाद भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं और ऊंचाई वाले जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी इन इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti.
3: La foire Bilbil Kaji retourne Côte Winners.
4: Bilbil Kaji de retour Côte Winners. Du 24 juillet au 6 août uniquement. Le pack de deux torchons Winners à 54,95 et du lundi 3 août au mercredi 5 août, les lingettes bébé câlin éco-pack de 100 unités à 59,95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
3: Nous ramène, nous la cause.
5: On est tous Winners.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलिए जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एंड आपने मूवी देखी होगी ए बी सी डी, उनका सिक्वल भी आया था ए बी सी डी 2 जो कि जून 2015 में आई थी। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या मिलेगा। पहले मैं अपना सवाल आपसे पूछ लेती हूँ और विनर को मैं बता दूँ कि आपको मिल सकता है एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ खेलने पर एक्साइटिंग प्राइजेस। जी हाँ, द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और यहाँ पर आपको मिल सकता है मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 foot कूपन फॉर द जेम्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। ये चलेगा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक एट SBI CC Pie। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक शॉपिंग, जहां पर आप एक्सपीरियंस करेंगे भाई शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फैमिली फन, इंटरनेशनल होम शॉपिंग होने वाला है, एंटरटेनमेंट शोज होने वाले हैं, मैजिक शोज, फैशन शोज। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि परिणय जैन, जिन्हें आपने इंडियन आइडल में देखा था गाते हुए सुना था, तो उनका लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। एंड यहाँ पर धर्मेश सर, जो कि बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं, उनका भी स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। एंड होने वाला है कैनमा का शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल, ये सब ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो मूवी आई थी ए बी सी डी एनीबडी कैन डांस इन 2013, जी हाँ ए बी सी डी एनीबडी कैन डांस इन 2013, उसमें आपको मुझे ये बताना है कि प्रभु देवा के साथ उनके एक दोस्त थे जिन्होंने गोपी का किरदार निभाया था। जी हाँ, जिन्होंने गोपी का किरदार निभाया था और प्रभु देवा थे विष्णु और गोपी का किरदार जिस कोरियोग्राफर ने निभाया था, आपको मुझे बताना है उनका पूरा नाम, ये कौन है कोरियोग्राफर। आपके जवाब आपको भेजने हैं 5491294 पूरे नाम और पते के साथ।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: एंड यस, हमने आपसे सवाल किया था, हमने पूछा था आपसे कि जो फिल्म आई थी ए बी सी डी, ए क्या बोलती तू, अरे ये वाला नहीं, ए बी सी डी आपने मूवी देखी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी आई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट एंड कोरियोग्राफ्ड, और इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं वो रेमो डिसोजा हैं, और इसमें बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म का नाम है ए बी सी डी, तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स भी चाहिए और बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो डांस कर सकें। तो यस, यहाँ पर प्रभु देवा ने प्ले किया था विष्णु का किरदार, और मैंने पूछा था कि गोपी का किरदार, उनके एक अच्छे दोस्त हैं, उनका किरदार किसने निभाया था। द राइट आंसर इज गणेश आचार्य। इस फिल्म में के मैनन भी हैं, एंड इस मूवी में धर्मेश भी हैं, जी हाँ, लोरेन, और साथ में पुनीत पाठक, यहाँ ब्रुशाली छावा, नूरेन शाह, भावना खंडूजा, ये बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं इसमें जिन्होंने डांस कंपटीशन में भाग लिया था, और जिसके चलते रेमो ने उनको इस फिल्म में लिया था, कास्ट किया था। तो चलिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, द राइट आंसर इज एक्चुअली गणेश आचार्य। एंड यहाँ पर विनर कौन बने हैं, चलिए ये जानते हैं विनर है कौन, कौन जीता है इनाम। तो यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है चंदनी रामकोरन का, जो रहती है वी गांव पर। कंग्रेचुलेशंस, आपने खेला है एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ, और आपको मिल रहा है 4 एंट्री टिकट्स, और साथ में यही नहीं, जाओगे तो भूख भूख तो लगेगी, तो वहाँ पर आप इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म खाना, यानी कि एक फूड कूपन मिल रहा है जेम्स लिटिल इंडिया शाही थाली के लिए। वाह, क्या बात है। और ये है उत्सव इंडिया मर्चेंट शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। ये शुरू हो रहा है 12 अगस्त को, चलेगा 16 अगस्त तक एट एसबीआई सीसी पाई, 10 बजे दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक, यानी काम के बाद भी आपको मौका मिलेगा जाकर शॉपिंग करने का। तो बस यहाँ पर आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग का मजा आएगा, इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि परिणय जैन, जिन्होंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था, उनका लाइव परफॉर्मेंस होगा, और साथ में भूलिएगा नहीं धर्मेश सर से मिल

करने का भी आपको मौका मिलेगा। फूड फेस्टिवल, ब्लड डोनेशन कैंप, कानमा का शो होगा, मैजिक शो, फैशन शो, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, बस आपके वहां पे जाने का इंतजार है। रिमेंबर, ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। जीतने वाले को अपना आईडी कार्ड लेकर एमबीसी आना पड़ेगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। याद रखिए, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच टू कलेक्ट योर टिकट्स एंड योर वाउचर।

0: एंड यस, इसी के साथ अगर आप लोगों ने हमारा जो स्पोर्ट्स है वो मिस कर दिया 7:40 पे, तो चलिए अरविंद से फिर मिलते हैं।
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए अरविंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स को अलविदा। 10 दिनों के राष्ट्रमंडल खेलों का कल समापन हुआ। फाइनल मेडल टेबल में 215 गोल्ड मेडल जीते गए। ऑस्ट्रेलिया शुरू से अंत तक आगे रहा 70 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 171 मेडल्स दी कांगारूज के नाम। इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पे आया, 29 गोल्ड मेडल

29 गोल्ड मेडल्स टोटल 110। कनाडा तीसरे स्थान पे 19 गोल्ड मेडल 19 गोल्ड मेडल्स टोटल 62। और चौथे स्थान पे सम्माननीय स्थान टीम इंडिया के लिए 13 गोल्ड मेडल टोटल 39। मॉरिशस 15वें स्थान पे आया 1 गोल्ड मेडल टोटल 4। 74 देशों में 15वां स्थान लेना मॉरिशस के लिए सम्मान की बात है। मॉरिशस के लिए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स यादगार रहेंगे, खासकर जब 28 साल बाद गर्व के साथ राष्ट्रीय धुन हमारा नेशनल एंथम सुनने को मिला। रेमी फेये हमारा गोल्डन बॉय बना, नोएमी अल्फोंस डबल सिल्वर और मेवे क्लेयर का बॉक्सिंग मेडल, बधाई हो। कई रिकॉर्ड बने, ऐतिहासिक पल रहे, हिस्टोरिक इंडिविजुअल एंड नेशनल माइलस्टोन्स। वेल्स की साइक्लिस्ट एमा फिनुकेन अकेली 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। साउथ अफ्रीका का स्विमर 21 कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर मेडल। और फिर बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, मॉरिशस के 4 मेडल जिन्हें रेमी फेये का स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल रहा। क्लब फ्रेंडलीज में लिवरपूल की हार हुई, लिवरपूल लीड्स के खिलाफ हार गया। द रेड्स हाफ टाइम में 2-0 से आगे थे, चैंबर्स और वर्ड्स का एक ही गोल, पर सेकंड हाफ में लीड्स की वापसी, कैल्वर्ट लेविन का डबल, आरंसन और लॉन्गस्टाफ ऑन टारगेट, 4-2 से लीड्स की जीत और लिवरपूल के मैनेजर इराओला की पहली हार। फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स के अच्छे परफॉर्मेंस रहे, पर सेकंड हाफ में सेकंड टीम का डिफेंस कैल्वर्ट लेविन जैसे अनुभवी नामी स्ट्राइकर के सामने टूट पड़ा। इधर टोटनहम हॉटस्पर ने चेल्सी को 1-0 से हराया, रिचार्लिसन का गोल। अन्य मैचों में आयक्स की जीत हुई 3-1 से वुलेंडाम टीम के खिलाफ, फेयेनूर्ड ने 2-1 से अटलांटा को हराया, गलातासराय 3 रेन 3, बर्नली 0 टोरिनो 1, संडरलैंड 1 रेक्सम 0। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में फर्स्ट फेज में से जॉनस्टन 4 किलमोनो 3, हिबेनियन 1 मदरवेल 2। रेंजर्स ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था, जबकि आज सेल्टिक की एंट्री होगी डंडी के खिलाफ। फ्रांसो न्यूज, अर्जेंटीना का इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल मिडफील्डर वालेंटिन बारको चेल्सी में आएगा, स्ट्रासबूर से उसे साइन किया गया। वर्ल्ड कप में सब्स्टिट्यूट था, पर इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के बाद बाको और जूड बेलिंगम रेसलिंग करने लगे थे, इसीलिए बाको फेमस हुआ। टोटनहम हॉटस्पर विक्टर ओसिमहेन के लिए 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भेज रहा है गलातासराय के यहाँ, और ब्रूनो गुमारेस आर्सेनल के यहाँ मेडिकल पूरा करने वाला है, फिर 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रांसफर हो सकता है। इधर मोहम्मद सलाह तुर्की की ट्राबजोंस्पोर टीम के करीब है, इससे पहले बेसिकतास में जाने वाला था, पर अब ट्राबजोंस्पोर उसे साइन करने के लिए फेवरेट है। बायर्न म्यूनिख मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को को साइन करना चाहता है। इधर एस्टन विला और इंग्लैंड के डिफेंडर एज्री कोंसा आर्सेनल में जाना चाहता है। चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर और न्यूकासल यूनाइटेड तीनों अटलांटा के सेंटर बैक जोजो स्काल्विनी के पीछे हैं, और लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान में जाना चाहता है, लिवरपूल ने उस पर 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है। लोकल स्पोर्ट में रीजनल फुटबॉल, रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल सिलेक्शन प्लेन दे रोश ने रियोले कैडेट्स को 5-0 से हराया, 5 गोल पुष्कर दमरी की ओर से। इधर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के दूसरे सप्ताह में मैच नंबर 2 में कॉन्टिनेंटल चीतास की जीत हुई 2 विकेट से एपीपी लियोपार्ड्स के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द मैच कीगन केपनर रहा। मैच नंबर 3 में वन हेल्थ जगुआर जीत पाए टोमास कुक टाइगर्स के खिलाफ 5 विकेट से। मैच का सज्जन मैन ऑफ द मैच रहा रजन। That's it, the latest from the sports world. एक बार फिर ब्रावो, बधाई कहेंगे हमारे एथलीटों को जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर आए, और ये ऐतिहासिक गोल्ड मेडल यादगार रहेगा। ऐसे ही मेडल जीतते रहेंगे और मॉरिशस का नाम रोशन करते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: All right, guys, thank you so much for joining us. आपका प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे मॉर्निंग बीट, और मॉर्निंग बीट में चलिए जानते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं भैया काफी खुश लग रहे हैं. यहाँ पर कितने सारे लोगों के मैसेज आए हैं, एंड राखी कहती हैं कि भाई मजा आ गया आज का जो म्यूजिक है सुन सुनकर हम भी डांस करते हुए काम पर जा रहे हैं. एंड ट्रैफिक की अगर बात करें तो अगर आप चाहे तो मैं बता सकते हैं 1549 and 1294. यहाँ पर मोक्षदा हमारे साथ हैं, चलिए उनको कहेंगे गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं दीपा. दीपा कहती है कि भाई हम काम पर जा रहे हैं और आपको सुनते हुए जा रहे हैं गाड़ी में, मेरे हस्बैंड के लिए अगर हो सके तो गाना चलाएगा जरूर, क्यों नहीं. और वहीं पे चलिए हम नेक्स्ट गाना शिमला के नाम डेडिकेट करते हैं, साथ देने के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग. चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, एक प्यारा सा गाना आपके लिए, थोड़ी और मस्ती, क्या ख्याल है.
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel

दोस्तों हम कभी कभी दोस्ती निभाते हैं, कभी प्यार करते हैं और बाद में हमें कभी रोना पड़ता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ज़िंदगी में हमें परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है ना। वैसे हर किसी से दोस्ती नहीं की जा सकती है, वैसे भी हर किसी से दुश्मनी भी नहीं की जा सकती। जल शब्द की तीन मीनिंग है। पहला है पानी जो प्यास बुझाती है, दूसरा है जलना यानी कि आग से रिलेटेड, और तीसरा है जलन यानी जलसी। कोई अगर किसी से अच्छी दोस्ती निभा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी अच्छा दोस्त हो, और कोई अगर किसी से दुश्मनी निभा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी दुश्मन हो। हमेशा इंसान को परखना सीखो, पहले ये जानो कि वो आपके प्रति क्या भावना रखता है, फिर फैसला करो कि उनसे दोस्ती करनी है, उनसे प्यार करना है या तो फिर उनको अवॉइड करना है। जैसा हमने कहा कि जल शब्द के तीन अर्थ होते हैं, वैसे एक इंसान जो है उसका जो प्यार है, उसका जो व्यवहार है, वो बाकी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से मिलता है। आपसे कौन कैसे मिलता है, आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ, पहले ये जान लो फिर फैसला करो कि आपको क्या करना है।

0: का गाना आपके लिए
1: मॉर्निंग बीट ओह गॉड वन मोर रिमिक्स अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स
0: चलिए भी हमारे जाने का टाइम हो गया है हमसे भी ये सितम सहा नहीं जा रहा है अब तो ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा चलो जी आप लोग भी ब्रेकफास्ट करें तो एंजॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहें आपके अपने रेडियो मस्ती पर कल मॉर्निंग 7 बजे जगाने आऊंगी प्यार से ख्याल रखिएगा अपना बाय बाय टेक केयर

बात परी आ रही है बिना पंखों वाली, हमारी प्यारी सी परी, साथ देने के लिए आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक इन योर मॉर्निंग मस्ती। वैसे आप चाय लोगे, कॉफी लोगे, क्या लोगे, यहाँ पर तो तम्मा तम्मा लोगे। एंजॉय।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, 9 a.m. यहाँ पे हो गया ना.
4: संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको.
5: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार. मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी. कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बैठा कर उसे ले जाया गया. हालांकि कुछ समय बाद ही उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन ये घटना वीडियो

0: वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून के मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन चलने को कहा। हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना किसी हिंसा के और कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया। सरकारी गठबंधन में शामिल रजिस्ट्रों से कौतना चीव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप को पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुकूल चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियां, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। महिला कैद खानों में सजा काट रही महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किनवेते नामक गैर सरकारी संगठन की मिली जुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट्री मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ग्रीस में जंगलों में लगी आग बुझाने के अभियान में कार्यरत 2 हेलीकॉप्टरों के बीच टक्कर हुई। कम से कम 2 क्रू सदस्यों की मौत की खबर है। ये हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ी दूरी पर पेश आया। हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर्स टकराने के बाद एक में आग लग गई जबकि दूसरे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So well friends, it's time for your morning musty, जहां पर weekend के बाद आ गया है एक बार फिर Monday, 3rd of August and I do hope that ये Monday आप सब के लिए काफी kind हो, हम सब के लिए काफी kind हो. Back to work and yes, of course, यहां पर आपका साथ देने के लिए हम हैं on RM2 Radio Musty. मैं हूं परी आपके साथ लेकर your morning musty. मॉर्निंग टाइम में आपके लिए होने वाला है बहुत कुछ. खास सेगमेंट्स होंगे कुछ गेम्स और काफी कुछ इंटरेस्टिंग. सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड. आपका साथ हमारे लिए स्पेशल. ड्राइव कर रहे हैं, काम पर पहुंच चुके हैं या फिर आज वर्क फ्रॉम होम, जो भी है आपका प्लान, जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, आपके लिए होने वाला है गुड गुड म्यूजिक राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए बहुत सारे लोग काम की भाग दौड़ में हैं, कुछ लोग ऑलरेडी काम पर पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी ड्राइव कर रहे हैं। सो जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, हम आपकी मॉर्निंग खास बनाने वाले हैं। कुछ लोग तो अभी चाय की चुस्कियां एंजॉय कर रहे हैं, कभी अभी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर प्लान्स, जो भी है आपके प्लान्स, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आपके मैसेजेस डेडिकेशंस है वो यहां पर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू दैट यहां पर हमारी एक डियर लिसनर है और थोड़ी सी मार पड़ गई है, आप है कामना, बिजी कैप रहती हैं और कहती हैं कि गाना डेडिकेट करना चाहती हैं फॉर मामा पापा देविना विनोद, भाई भाभी संदीप विश्नी और आपके पति अक्षय, दोस्त निशा, सभी गोकुल परिवार के नाम और हमारी टीम के नाम भी। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू डियर। एंड कामना, हम कामना करते हैं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाए। एंड सेंडिंग यू लोड्स ऑफ गुड विशेज और अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए विशाल हमारा साथ दे रहे हैं आप लाल माटी से और आपने भेजी है अपनी बेस्ट विशेज। ऐसे ही अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर तो आप जानते हैं 5499-1294। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस तो यहां पर होते ही हैं और थोड़ी ही देर में लेकर आएंगे आपका हॉरोस्कोप, जानेंगे कैसा रहेगा आज का दिन। एंड गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो सुबह के 9:33 खुशियां तो हम सब बटोरना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। शुरुआत करते हैं वतेरीज मेष राशि। दिन आज काफी अच्छा रहेगा। आज किस्मत आपको बड़ा संकेत दे रही है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अटका काम अचानक सुलझ सकता है और समाज में आपकी पहचान चमक सकती है। टॉरस वृषभ राशि, दिन आपके लिए मौका लेकर आया है और कोई नई खरीदारी आज दिल को खुश करेगी। परिवार में रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। घर में नई शुरुआत, चाहे वाहन हो या फिर मरम्मत कार्य, शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि, भागदौड़ भरा दिन है लेकिन राहत की बात है कि मदद खुद चलकर आएगी। खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो बजट जो है वो बिगड़ सकता है। कैंसर कर्क राशि, आज का दिन परीक्षा ले सकता है लेकिन आप संभाल लेंगे। काम में फोकस बढ़ेगा और बॉस की नजर में आपकी वैल्यू भी। दिल में सहयोग की भावना बनी रहेगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। लियो सिंह राशि, आज आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है लेकिन मन में चल रही उलझने आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जीत आपकी होगी। सेहत, खासकर शुगर और बीपी को नजरअंदाज ना करें। वर्गो कन्या राशि, आज सेहत पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। पेट से जुड़ी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान लेकर आ सकती है और साथ ही आज आप अपने जो भी बातें हैं, आपकी जो भी राज की बातें हैं, इसे आप किसी से भी शेयर ना करें। इवन जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इनसे भी आप कुछ शेयर करने से बचें। तुला राशि, आज सुबह की शुरुआत ही खुशखबरी लेकर आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पुराने झगड़े खत्म होंगे और काम की रफ्तार तेज होगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज धैर्य ही आपकी असली ताकत है। मीठे वाणी से आप हर मुश्किल आसान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मामले में भाइयों से बात आगे बढ़ेगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता लेकर आने वाला है। सैजिटेरियस धनुराशि, आज रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जीवन साथी से कुछ भी छुपाना भारी पड़ सकता है। डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है और नए काम आज शुरू हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज नौकरी वाले लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। नए पद या प्रमोशन मिल सकते हैं। लक्ष्य पर फोकस रखेंगे तो सफलता तय है और प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो हर काम समय पर पूरा कर सकते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आज का दिन आपको मुस्कुराने की वजह देगा। समस्याओं का हल आज मिल सकता है और फाइनेंशियल कंडीशन आज बेटर होगी। नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है और कोई अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस मीन राशि, आज थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल करना जरूरी है। आपके काम में आपको नई पहचान मिल सकती है और बच्चे आज आपकी तरफ काफी उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे। उनके लिए आज कुछ खास करना आपके लिए काफी अच्छा होगा और इससे आपका भी फायदा हो सकता है और साथ ही साथ आज कोई खुशखबर आपका दिन बना सकती है। तो ये थी आज के लिए आपकी राशियां। विशिंग यू गुड लक एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

0: Daily Horoscope RM2 Radio Musti RM2
1: Radio Musti
0: Feel the Musti.
2: और चलिए हॉरोस्कोप आज क्या ही कुछ ना कहता हो लेकिन ये हम जानते हैं कि म्यूजिक इट्स अ थेरेपी और ये जो थेरेपी है ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. गुड म्यूजिक 24/7 आपके लिए ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. अभी के लिए इट्स योर मॉर्निंग मस्ती. साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परिका टिल नून और आपके लिए कुछ गुड म्यूजिक एंड स्पेशल सेगमेंट्स. सो स्टे कनेक्टेड, कहीं मत जाएं.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So, well, Musty Mornings, आपका स्वागत करते हैं दोस्तों. आप तो हमारा साथ दे रहे हैं, मॉर्निंग हो या इवनिंग, हमेशा साथ रहता है हमारे लिसनर्स का. ऑलवेज सो स्वीट, ऑलवेज सो लविंग, क्योंकि आपके मैसेजेस डेडिकेशन जो है वो तो यहाँ पर आ जाते हैं इतने सारे प्यार के साथ. सो वेल, अभी के लिए डेविसन साथ दे रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लालमाटी, आए हैं अपना प्यार लेकर ऑन रेडियो मस्ती. सो थैंक यू सो मच डेविसन एंड विशिंग यू वंडरफुल वीक अहेड. आज तो है मंडे और उम्मीद करते हैं कि हर दिन आपके लिए हो खास. अगला गाना आपके नाम एंड गोज आउट फॉर ऑल योर फैमिली, ऑल योर फ्रेंड्स. झाना जी ऑल द वे फ्रॉम फ्लाक आई है. आप भी अपना वक्त निकाल कर और स्वीट बातें जो है उन्हें एंजॉय कर रही हैं. रेडियो मस्ती पर गानों को सुन रही हैं.

0: और अगला गाना डेडिकेट करना चाहती हैं अपने पूरे परिवार के नाम। रीमा, जनिता, श्रेष्ठा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, शिवसरन परिवार और फ्लाक भेज रहे हैं प्यार हमारे लिए। थैंक यू जी, हम भी भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार आप सभी के नाम। अब्दुल अंसारा बानू, हैप्पी मंडे विशेज लेकर आए हैं फॉर ऑल द लिसनर्स। थैंक यू जी, गुड विशेज आपके नाम भी। हैव अ वंडरफुल मंडे एंड हैव अ सुपर्ब वीक अहेड। साथ ही यहाँ पर निष्ठा शाम लोल साथ दे रही हैं और कहती हैं, विश करना चाहती हूँ प्यारी बेटी आस्था को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बेस्ट विशेज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम डैड विमल, दादी सरोज, भाई यूवी, सिस्टर युविका, आंटी अक्षता एंड ऑल शाम लोल एंड दोमा परिवार ऑफ पॉइंटो पीमा। उनके लिए भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज हमारी ओर से भी। आस्था, आपको बहुत सारा प्यार ऑन योर स्पेशल डे। और चलिए यहाँ पर देविना जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए गुड विशेज, लव, गुड हेल्थ एंड शुभकामनाएं कमिंग फ्रॉम सुनील, आदर्श, संतना, यश, जैना और सिस्टर्स, नीसेस, नेफ्यू सभी की ओर से प्यार एंड स्पेशल विशेज। साथ ही आज विशाल लालमाती से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भी, पूरा परिवार भेज रहा है प्यार ऑन योर स्पेशल डे। श्वेता हुकुम बुनाकाई से डेडिकेट करना चाहती है रोमांटिक गाना उनके हबी रोशन के नाम, एंड दैट्स कमिंग उनकी बुबू रानी की ओर से, और कहना है दैट आई लव यू सो मच हस्बैंड जी, ये है स्पेशल विशेज फ्रॉम योर लवली वाइफ। सो चलिए दोस्तों, साथ देते रहिए और आपके स्वीट मैसेजेस, स्वीट डेडिकेशंस हम तक पहुंचाते रहिए। नंबर हमारा वही रहेगा, इट्स 5499 1294। अभी के लिए इट्स योर मस्ती मॉर्निंग ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ टिल 12 PM।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इनटू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

कहां बढ़ने वाली हैं नेक्स्ट आवर की ओर. नेक्स्ट आवर में भी कुछ खास सेगमेंट्स, कुछ खास गेम्स कर रहे हैं आपका इंतजार. स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती, दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स. साथ रहेगा टिल 12 PM.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 10 a.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। कल से क्राक यानी कोलेक्टिव रिपरेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल जॉन मोजेओ संस्थान के साथ मिलकर बोबासा में एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। ये सिंपोशन गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। स्नातक, कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। मुआवजे पर बहसों से परे गुलामी के कुछ ऐसे दर्दनाक अवशेषों पर ध्यान दिया जा रहा है जो आज भी समाज में दिखाई देते हैं, खासकर कुछ शर्मनाक नामों या उपनामों के जरिए जो कभी मालिकों द्वारा अपने गुलामों पर थोपे गए थे और जिनका बोझ पीढ़ियों से कुछ लोग धोते आ रहे हैं। महिला कैदखानों में सजा काट रहे महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किनुएते नामक सरकारी संगठन की मिलीजुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 8000 यूनिट्स वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुकूल चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम किया जा रहा है। नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा गया है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के कई अन्य साथी देशों से मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शुभ समाचार। जम्बो रोड शमैघोनी में 79 साल के 79 years old श्री आदि नारायण यूसरी जो गुरु नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री प्रवीण यूसरी के मकान जम्बो रोड शमैघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगो पर शामुनि की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
7: NBC Radio.tv. Welcome to RM2
4: Musti Mornings Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एग्जैक्टली गुलाबी मॉर्निंग गुलाबी इवनिंग गाने अच्छे हो तो फिर दिन तो अच्छा अच्छा लगने ही लगता है और कोशिश यही होती है दोस्तों कि गुड म्यूजिक आप तक हम पहुंचाते रहे बिकॉज म्यूजिक इज अ थेरेपी और ये तो हम मानते हैं और जानते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी गुड म्यूजिक एंजॉय करना काफ़ी पसंद करते हैं सो बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आते हैं अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग वेल अभी से लेकर दिन के 12 बजे तक आपको हम बहलाते रहेंगे इन प्यारे गानों के साथ साथ इस आवर में काफी कुछ खास होने वाला है वी हैव अ स्पेशल सेगमेंट जहां पर एक फैशन टिप आप तक पहुंचाएंगे एंड वी आल्सो हैव अ गेम कमिंग अप आपके लिए सो खास एंड स्पेशल आपकी ये मंडे मॉर्निंग बन रही है RM2 रेडियो मस्ती के साथ आप कहीं मत जाइए बस हमारा साथ निभाते रहिए और अगर कनेक्टेड हैं हमारे साथ सो ड्रॉप इन आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर अभी के लिए वी हैव दिस वन टू गेट यू इन द मंडे मूड कुछ गाने ऐसे जो आपके दिल को लुभाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई मंडे आया तो क्या हुआ अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है और पूरे हफ्ते के लिए आपको एनर्जी हम जरूर देंगे इन गानों के साथ चलिए अभी के लिए वी हैव दिस वन फ्रॉम द फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन शाहिद मालिया श्वेता पंडित की आवाज़ें फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ एंजॉय दिस वन

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों 10:14 हो गए हैं एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ जहां पर आप खेले एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स के साथ और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस स्टैंड अ चांस टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली इसे एंजॉय कर सकते हैं आप एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट SBI CC पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक सो इसी के लिए हम एक सवाल आपसे पूछने वाले हैं और एक फिल्म जो काफी चर्चाओं में है वो है नीतीश तिवारी की रामायण और इस फिल्म में नजर आएंगे रणबीर कपूर आपको हमें बताना है दैट इस फिल्म में सीता का किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभा रही है बात हो रही है फिल्म रामायण की जो इस अक्टूबर रिलीज हो रही है दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है इस फिल्म में श्री राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर और आपको हमें बताना है कि सीता का किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभा रही है आपके सही जवाब 5499-1294 पर 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पते के साथ ऑल द वेरी बेस्ट

0: मणिपुरी क्रॉप टॉप शेरवानी सूट ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन रॉयल रोड पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378। हलकोरी फैशन परंपरा एलिगेंस और कारीते।
1: RM2 Radio Musti

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सवाल आपसे पूछा था सवाल एक फिल्म जो आजकल काफी चर्चाओं में है वो है नीतीश तिवारी की रामायण जो दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है और इस फिल्म में माता सीता का किरदार किसने निभाया है और यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब राइट आंसर इज साई पल्लवी और लकी ड्रॉ के बाद लकी विनर आप है दीपशिका सी गुलाम आप है लाफ लगा से और बन गई है लकी विनर कांग्रेचुलेशंस सुवेल खेला आपने एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 तक एट एसबीआई सीसी पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक जहां पर आप एंजॉय कर सकेंगे इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शोज लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर कैनमा का शो होने वाला है ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड फूड फेस्टिवल एज वेल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड और कांग्रेचुलेशंस हमारी विनर दीपशिका आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब इनाम कलेक्ट करने के लिए आना होगा एमबीसी मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से लेकर आफ्टरनून 3 पीएम तक और जब आप आती है डू ब्रिंग योर आईडी अलोंग सो आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस जीतने के मौके और भी मिलेंगे स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक
0: RM2
1: Radio Musty
3: Parez-vous plus grand festival shopping Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI ML et LIC Mauritius point a lieu dans SBI Sissipai tous les jours à partir de 12 août jusqu'à 16 août de 10h à 9h à soir point a shopping avec ban exposant local et international food festival fashion show magic show et beaucoup les autres attractions Utsav India Mauritius Shopping Carnival du 12 au 16 août à SBI Sissipai organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
4: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए आप तोहर अप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जोन सच्चाई में मायना रखेला जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइ इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
5: सिकम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट
0: RM2
1: Radio Musty

0: minutes. Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So well friends, time to share कुछ fashion tips आपके साथ. तो अगर आपकी height छोटी है तो short dresses या फिर high waist midi dresses आप try कर सकते हैं. इससे आपके जो legs हैं वो longer लगेंगे और ये look आप पर ज़्यादा stylish लगेगा. अगर आपकी curvy body है तो आप wrap dresses try कर सकते हैं. ये best option होते हैं, comfortable भी और super flattering भी. डे आउटिंग के लिए फ्लोरल मिडी ड्रेस और इसके साथ वाइट स्नीकर्स एफर्टलेस क्यूट लुक आपको देते हैं. एंड इवनिंग पार्टी में अगर आप जा रहे हैं तो सॉलिड कलर्स यूज कर सकते हैं. बॉडीकॉन ड्रेसेस या फिर सैटिन ड्रेस आप पर अच्छे लग सकते हैं. और ज्वेलरी जो है उसे आप काफ़ी मिनिमल रखें और ये एक क्लासी लुक गारंटी करता है. अगर ड्रेस सिंपल है तो कोई एक स्टेटमेंट इयररिंग या फिर स्टाइलिश हैंडबैग पूरे लुक को अपग्रेड कर सकते हैं. सो यही छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप और भी स्टाइलिश लग सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा सेगमेंट आपके लिए जहां पर हमने शेयर किए कुछ फैशन टिप्स आपके साथ.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
3: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Musty, you're

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: And well, यहाँ पर मॉर्निंग टाइम अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं योर मस्ती मॉर्निंग. जीना जोयश्री आई है अपनी स्पेशल विशेज लेकर. सो थैंक यू फॉर योर लवली विशेज जीना जी. अगला गाना होगा आपके नाम. वी ऑल्सो हैव माला शामलोल. डेडिकेट करना चाहती है गाना फॉर ग्रैंड डॉटर आस्था एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी 15th बर्थडे. विशेज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम शामलोल एंड सीचन परिवार ऑफ पॉइंट ओपीमा. गुड विशेज उनके लिए. अक्षय यहाँ पर साथ दे रहे हैं आप एंड एंजॉइंग द सॉन्ग. सो अगला गाना होगा आपके नाम एंड थैंक यू फॉर योर लवली विशेज. साथ ही यहाँ पर अंकित आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर मीनाक्षी. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज़.

0: are into
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Musti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, विद दिस ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती, दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग.

0: क्राइम चेक दिन के 11 बजे हैं देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोडिसे डन पीपल को पूरा करने में 3 साल लगे जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह सेशल्स और मॉरिशस में पाई गई वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई इसलिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका ब्रिटेन और अलग अलग देशों के थे जिन्होंने शागोस वासियों के मुद्दे का समर्थन किया था इसके लिए उन्हें लंदन न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून मापदंडों के अनुरूप नहीं था पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्टेशन चलने को कहा लेकिन हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना किसी हिंसा के कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया सरकारी गठबंधन में शामिल हजिस्तान से कौलतेना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए

0: इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। आज इसके 18वें दिन को आदि पेरु को मनाया जा रहा है। वैवाहित महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के अन्य साथी देशों की मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। जंबो रोड शमैगोनिया में उनासी साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री आदिनारायण युसरी जो गुरु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री प्रवीण युसरी के मकान जंबो रोड शमैगोनिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

बिल्कुल जी, एक बार फिर मुलाकात हो गई है आपसे एंड वेलकम इन दिस आवर। दिन के 11:10 हो रहे हैं। इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग राइट हियर ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ दिन के 12 बजे तक। इस आवर में भी आपके लिए कुछ खास एंड स्पेशल, सो स्टे वेल कनेक्टेड।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti।

सो वेल इट्स योर मस्ती मॉर्निंग जहां पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मॉर्निंग टाइम में आपके लिए कितना कुछ होता है करने के लिए। सुबह की भाग दौड़ के बाद फाइनली हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऑलरेडी काम पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग वर्किंग फ्रॉम होम दे आर स्टिल कनेक्टेड हमारे साथ और कुछ हमारी प्यारी सी लेडीज जो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हमारे वो लिसनर्स जो शॉप्स में काम करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, वो हमें सुनते हैं। तो बस आप सबके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार ऑन दिस मंडे मॉर्निंग। नया हफ्ता शुरू हो रहा है दोस्तों, और जैसे हम कहते हैं दैट एवरी डे इज स्पेशल, और इसे स्पेशल बनाना आप ही के हाथ में होता है। कभी कभार लगता है कि ओ माय गॉड लाइफ इज सो फास्ट, यानी कि सब कुछ कामकाज के पीछे वक्त नहीं मिलता है, सब कुछ इतना जल्दी चलते जा रहा है और वक्त ही नहीं होता कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। वीकेंड आता है वो भी इतनी जल्दी निकल जाता है, और उसके बाद लगता है कि कब अब फिर से वीकेंड आए। सो यही एक साइकिल है जो चलती रहती है। एंड अभी के लिए हमारे जो बच्चे हैं दे आर एंजॉइंग, उनकी तो छुट्टियां चल रही है, सो उनके लिए तो अभी एक मस्त टाइम है। सो वेल बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो हैव अ ग्रेट टाइम। आपके लिए भी कुछ प्यारे प्यारे गाने हम चलाते जाएंगे एंड विशिंग यू ऑल हैप्पी हैप्पी हॉलीडेज। अभी के लिए हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, यू कैन सेंड अस आपके मैसेजेस डेडिकेशंस 54991294 पर। कहते हैं ट्यून टू RM2, और इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि इस वक्त आप यहाँ बिल्कुल जी, आज वक्त थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 से 4 में भी आपका साथ निभाएंगे, लेकिन अभी टिल नून मैं हूँ परी आपके साथ और रोशनी आप भी साथ दे रही हैं, सो थैंक यू सो मच। गाना आपके नाम एंड यहाँ पर यमी यमी ग्रेप्स एंजॉय कर रहे हैं। आप है यलेश ऑफ सुरिनाम और कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ एंजॉयिंग द सॉन्ग। तो चलिए अगला गाना होगा आपके नाम फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम, और साथ ही यहाँ पर हमारे अपाडू परिवार जो हमेशा साथ निभाते हैं ऑन रेडियो मस्ती। सो अगला गाना होगा आपके नाम एवरीवन जो इस वक्त टाइम निकाल कर गानों को एंजॉय कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल टाइम, दिस वन गोज आउट फॉर यू।

0: 92 रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Phi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Phi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
1: RM2
0: Radio Musti.
1: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Musti, your number one Bollywood station.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली

0: to Radio Musty.
1: Une envie de McDonald's là, tout de suite? Mais pas envie de bouger. Pas gain tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrées directement chez toi grâce à Deliveroo et Order Manzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, mais commandé, noir méné. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bousé, nous vini.
2: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2 Radio Musty.
3: सो वेल फ्रेंड्स, गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती. यहाँ पर पविका हमारा साथ दे रही हैं एंड पेंटिंग एंजॉय कर रही हैं वाइल लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. दैट्स रियली स्वीट. एंड चलिए ये गाना आपके नाम पविका एंड हैव अ नाइस टाइम.

साथ ही यहाँ पर सभी हमारे लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं उसमें रीटा जी आप भी शामिल है ऑल द वे फ्रॉम मिलानो हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं दैट रेडियो सुनते हुए एंजॉयिंग द टाइम दैट्स रियली स्वीट सात समंदर पार से आपने ट्यून इन किया है सो फ्रॉम मॉरिशस आपके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी गुड विशेज कुछ प्यारे गाने जिसे हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम और वेल यहाँ पर कहना है दैट स्वीट मैसेज आया है ओके जी आई डिड नॉट गेट योर पूरा मैसेज और आपका नाम यहाँ पर नहीं आया एंड थैंक यू इट मीन्स अ लॉट दैट आप शो को एंजॉय कर रहे हैं हमारे गानों को एंजॉय कर रहे हैं साथ ही यहाँ पर गीता सीता बोलू राम साथ दे रहे हैं शातो बनारस से सो वी हैव दिस गाना आपके लिए फॉर एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती हैव अ वंडरफुल टाइम मैं हूँ फरी आपके साथ वेल अभी के लिए इट्स टाइम टू से गुड बाय लेकिन मुलाकात होगी एक बार फिर 2 से लेकर 4 बजे तक जहाँ पर लेकर आएंगे बी टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स इन योर बॉम्बे टॉकीज मेरे बाद आ रही है पूनम आपके लिए कुछ रेट्रो हिट्स लेकर उनका साथ निभाइए ऑन रेडियो मस्ती और मुलाकात होगी थोड़ी ही देर में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check, दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
8: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोडिसे द पर्पल को पूरा करने में 3 साल लगे हैं, जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह से शेल्स और मॉरिशस में पाई गई, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई। इसलिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में थे, जिन्होंने शागसवासियों के मुद्दे का समर्थन किया था। इसके लिए उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था। इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है। Cassé collectif, réparation, avancement, créole, cardinal Jean Mangéo संस्थान के साथ मिलकर बोबासा में एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। स्नातक कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा, परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है।

0: इसके 18वें दिन को आदि पेरुकु मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के अन्य साथी देशों से मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। अवेन्यू कास्केट पाल्मा का थोबोन में साठ साल के 60 years old श्री रविकांत अजोदा जो फुंदन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज कल दिन के ढाई बजे इनके मकान अवेन्यू कास्केट पाल्मा का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम
1: 12:09 हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। वाह, कल की बारिश के बाद आज की खिली खिली धूप ने तो मौसम ही बदल दिया। अगर आप भी इस खूबसूरत दिन का मजा ले रहे हैं तो साथ निभाइए इस सदाबहार गीतों के साथ। मैं हूं आपके साथ पूनम और शुरू हो चुका है आपका रेट्रो रिदम सिर्फ आरएम टू रेडियो मस्ती पर। चलिए गुनगुनाते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499 1294 पर। यहाँ पे हैं हम 24 आवर्स बस आपकी खुशी के लिए। इंजॉय कीजिए इन गानों को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: दोस्तों 12:18 हो चुके हैं और अगर आप इस समय लंच की तैयारी कर रहे हैं या खा रहे हैं तो एंजॉय कीजिए, सदाबहार गीत हमेशा आपके साथ है। दोस्तों राजेंद्र कुमार जी और साधना की जोड़ी ने इस एक दौर ऐसा आया था जहां पे लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली थी और उनके दिल ऐसे जीत कर एक कोने में अपनी पॉकेट में रख लिया था। उनकी शानदार केमिस्ट्री और उस पर मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई आवाज़, बस ऐसे ही कहते हैं ना कि उनके गाने चलते रहें और हम सुनते रहें। ये गाने हैं ऐसे क्योंकि इसमें जो फील है, जो मोहब्बत है, जो आशिकी है, वो सिर्फ आंखों से थी। वो मुझे लगता नहीं है कि उस जमाने में वो ज्यादा इतना हिलते डुलते थे या डांस करते थे, बट जब उनके केमिस्ट्री दोनों की जुड़ती थी, एक एक्टर्स कई ऐसे एक्टर हैं जो वहां पर जब साथ काम करते थे उनकी जो मोहब्बत दिखती थी वो रियलिटी में वो बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था कि एक दूसरे का नेचर कैसा है। बट जब जादुई मूवी, कोई भी मूवी में वो काम करते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, इन्होंने ये दोनों एक ही दूसरे के लिए बने हैं और इसी से करते करते हम लोगों ने भी मोहब्बत करनी सीखी। यही तो जो मोहब्बत उनसे चलती आ रही है, सिंपल, सादी और प्यार भरी। चलिए इंजॉय करते हैं ये गाना दिल विल प्यार का, बहुत ही प्यारा सा गाना है मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

किसी का हो।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:33 हो चुके हैं और ये गाना था आशा भोसला की आवाज़ में, और बहुत ही प्यारा सा गाना जिसमें कहते हैं कि भाई कुछ पी लो, कुछ खा लो, लंच आवर है, तो अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है तो साथ साथ कुछ खाते रहो, और अगर आपने खा लिया है थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ये टाइम है सिर्फ आपके लिए, आपका टाइम है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उठे हुए हों और आपको सिर्फ 10-15 एक रिलैक्स मोड चाहिए होता है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट तो करें पर साथ साथ गानों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आर एम टू रेडियो मस्ती लेकर आता है आपकी पसंद के गाने भी और हम अपनी पसंद के भी चलाते हैं, तो कई गाने ऐसे होते हैं जो उस टाइम को सूट नहीं करते तो हम वो नहीं चला पाते, पर जो हमें लगता है कि आपने बिल्कुल राइट डिसाइड किया है कि इस टाइम पे ये चलने चाहिए, किसी की जो नींद है ना थोड़ी सी भी कहते हैं ना कि शेक करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम तो सारों के मूड के हिसाब से चलाते हैं कि दोपहर जो है अच्छी बीते और एनर्जेटिक हो थोड़ा सा शाम के लिए, और पूरी रात पड़ी है फिर सुबह अगले दिन भी आपको काम करने हैं, तो अपनी पसंद ऐसी रखिएगा जो इस टाइम के हिसाब से चल सके और हम आपकी प्यारे से मैसेजेस पढ़ सकें। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेशमा जी जो कि बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रही हैं और हम उसके लिए चलाएंगे, साथ में केशव जी भी साथ दे रहे हैं, जना जी अपने पूरे परिवार के लिए प्यारा से गाने की फरमाइश कर रही है, हम एक एक करके सबके गाने चलाएंगे, निर्मला जी भी साथ दे रही हैं, अब्दुल एंड सायरा बानो जुड़ी हुई हैं साथ में, और सायरा बानो कह रही हैं अब्दुल तुम कहाँ हो, हमेशा मेरे दिल में हो, ये सच याद रखना, क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। आकाश मनसुख जी अपनी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और साथ में सिर्फ अपनी फैमिली को कह रहे हैं कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या बात है। ललित जी साथ हैं और अपने पूरे स्टाफ के साथ में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मेरी एक्स्ट्रा लगी हुई है क्लास भाई, और ये जो गाने हैं हमारे को साथ दे रहे हैं, और हमें तब मज़ा आता है जब इंडियंस गाने चलते हैं, हम US में रह के भी रेडियो मस्ती को अब नहीं छोड़ते, रेडियो मस्ती हमारा परिवार बन जाएगा। थैंक यू सो मच ललित जी इतना प्यारा मैसेज देने के लिए, रेशमा जी विमल इंदिरा रेशमा और सभी परिवार के सदस्य साथ दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ एडीना जुड़ी हुई हैं, अमित जुड़े हैं वाकिवा से, और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, एक एक करके सबके गाने चलेंगे, बट अपनी फरमाइश को वैसे रखिएगा जिससे हम चला सकें। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:46 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। कहते हैं ना कि सुबह सुबह से जब आप उठते हैं और उसके बाद ऑफिस जाना है, कस्टमर्स को देखना है, शॉप को क्लीन करना है, उसके बाद लंच आवर की जो एक क्यू होती है, या घर से कभी कुछ कोई बना के लेकर आता है, उसके अंदर प्यार मोहब्बत चाहिए होती है, कस्टमर को डील कीजिए बहुत मुस्कुराते हुए। और अगर आप कुछ खुद किसी के यहाँ जा रहे हैं कस्टमर बनके, तो हम आपको भी कहेंगे हमारे को साथ रखिए, पर अपने चेहरे पर मुस्कान को बिल्कुल गाड़ी में या बस में मत छोड़कर जाइए। हंसते हुए जाएंगे, देखिएगा उसकी वही दिन बन जाएगा और आपका भी दिन बन जाएगा। जो चीज़ लेने जाएंगे आपको उसका कलर भी पसंद आएंगे, उसकी क्वालिटी भी पसंद आएगी, उसका जो फैब्रिक होगा वो भी पसंद आएगा। अगर हमारी थोड़ी सी अगर नाराज़गी होती है या हमारा दिन अच्छा शुरू नहीं होता, तो फिर दूसरे भी उसी तरीके से एहसास दिलाते हैं कि अरे अरे बस जाओ जाओ। तो जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमेशा ऐसे ही रहे। हम तो यही बोलेंगे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे गाने तो आप ही की पसंद के चला रहे हैं हम यहाँ पर। चाहे आशा जी हो, लता मंगेशकर हो, मोहम्मद रफ़ी साहब हो, या मुकेश जी हो, या मन्ना डे हो, कोई भी हो, उसके बाद भी लगातार सृष्टि में इतने सारे कहते हैं ना सिंगर्स आए हैं, सभी की आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, धुनें बहुत अच्छी हैं, प्यार है उनके अंदर। मतलब कोई अगर रोने वाला गाना चलता है तो एहसास हो जाता है कि हमारे दिल में कोई दर्द है, और अगर थोड़ा सा मस्ती भरा गाना होता है तो एहसास होता है अरे ये तो बहुत गाना प्यारा है, चलिए इसमें थोड़ा सा झूम लें, नाच लें, डांस कर लें। तो चलिए भाई, हम भी आपको यही कहेंगे जिस मूड में भी है हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखें, इंजॉय कीजिए ये वाला गाना, और उसके बाद हम आपके सभी के मैसेजेस लेंगे, और फिर बस उसके बाद फिर एक बार न्यूज़ होगी जिसमें आप सुन पाएंगे आज की ताज़ा खबर।
0: Retro Rhythm
2: RM2

0: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: Welcome to RM2
2: Radio Musty.
3: North, South,
2: 103.5,
3: East, West,
2: 96.4,
3: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
4: Time check. दोपहर के एक बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को खबर मिली है कि ब्लैक रिवर में शेल फ्यूअल स्टेशन के पास एक पाइप से पानी का बहाव हो रहा है. जल जाया ना हो इसलिए एक टेक्निकी टीम को मुरम्मत कार्यों के लिए फौरन स्थल पर भेजा गया है. CWA के मुताबिक इंटरनल पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में खामियां और खराबियां हैं, जिसमें पिछली सरकार द्वारा 2023 में 700 मिलियन रुपए निवेश किए गए थे. सांसद वेरोनिक ले गोविन का पति गुलशन गोविन आज पोर्टविक की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं. आज सुने गए शुक्रवार को उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया. ये शक है कि वो रेडियन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे. इस मामले में एक और संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया था. आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है. सभी तमिल दंपति आदि परिनत्तम पेरुकुवेजा मना रहे हैं. ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका है. इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं. विदेश में इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया है. सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ. इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है. किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. जानकी रोड पुतोदो विलाज में 83 साल के 83 years old श्री बाल कृष्ण चमन, श्री बाल कृष्ण चमन जो धनेश्वर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुतोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM. रॉयल रोड इक्वानियो फ्लैक में 69 साल के 69 years old श्री विजय कुमार कासियों, श्री विजय कुमार कासियों जो गुल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज तीन बजे इनके घर रॉयल रोड इक्वानियो फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. ओलिया रोड नंबर 1 वाकुआ में 81 साल की 81 years old श्रीमती मुनिया केदू पैदाशी नाम मंदू की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज ढाई बजे इनकी बेटी हेमा केदू के घर उलियाहुद नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. एवेन्यू कैस्केट पालमा कैथ्रोबोन में 60 साल के 60 years old श्री रविकांत अजुदा जो फुंदन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल ढाई बजे इनके घर एवेन्यू कैस्केट पालमा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:08 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। पुराने गानों की बात ही कुछ अलग होती है, संगीत की अलग होती है, और अगर इस समय दोपहर का टाइम हो तो ये गाने और भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ी सा काम होता है, थोड़ा सा आराम का टाइम होता है और संगीत

0: के नाम का टाइम होता है। इस समय हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे संगीतकार के नाम जिनका नाम था आर डी बर्मन। आर डी बर्मन ने इतनी मूवीज बनाई, इतना कुछ लिखा और इतने सारे गानों के में ऐसा कोरस दिया या ऐसे संगीत दिया, ऐसे धुनें दी कि हम हमेशा चाहते हैं कि उनकी आवाज़, उनके गाने हमारे सामने आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनगुनाता रहे। अगर आप चाहते हैं कि खुद भी थोड़ा सा गुनगुनाएं तो बहुत ही अच्छा गाना है ये, आपको बहुत पसंद आएगा। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
3: ये नाम है मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा नहीं।

0: रेट्रो रिदम।
1: दोस्तों 1:29 हो चुके हैं और हम आपको बार बार याद दिलाते हैं टाइम, क्योंकि साथ साथ आप काम भी कर रहे होते हैं और आपको बहुत बच्चों को पिकअप करना होता है या कहीं किसी कोई काम से वापस घर आना होता है। तो हम तो दोस्तों यही कहते हैं कि जब मंडे होता है थोड़ा सा भारी लगता है सभी को, सैटरडे संडे की मस्ती के बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्यार से नहीं सीधा काम पर बिठा दिया हो। लेकिन कोई बात नहीं, तो दोस्त जो काम पर हैं दिल लगाकर काम कीजिए, और जो घर पर है शाम को जब अपने घर लौटेंगे तो उनका स्वागत एक बड़ी सी स्माइल के साथ कीजिएगा, एक प्यारी सी हग के साथ कीजिएगा। यकीन मानिए दिन भर की सारी थकान वहीं खत्म हो जाती है। बस मिस करना जरूरी होता है और एहसास होता है हमें भी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनों का साथ। चलिए भाई कोई बात नहीं, साथ है तो बहुत अच्छी बात है, जो कोई साथ नहीं है तो कोई नहीं, हम अपने आपके साथ हैं और खुद आप अपने साथ हैं। इंजॉय कीजिए ये गाने आपको थोड़ा सा बूस्ट देंगे और शाम तक की जो थकान जो अभी निकल जाएगी फिर आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर अपने सारे काम कर सकेंगे। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम 1:41 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें बहुत सारी थी, हम एक एक एक एक चल करके सबके चला रहे हैं, बट हमें एहसास है कि टाइम तो हमारे पास थोड़ा होता है और आपकी पसंद इतनी खूबसूरत होती है मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि किसका गाना चलाऊँ किसका नहीं चलाऊँ, पर फिर भी हम जिनके ये गाने चला पाए पर जिनके नहीं चला पाए उनके मैसेजेस तो पढ़ ही लेते हैं। सुरेश शर्मा साजदा जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कुमार देवी चरण जी अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं। लंच तो अभी ख़त्म भी हो गया होगा, अब आपको बस क्या करना है, थोड़ी सी बस ग्रीन टी पीनी है, थोड़ा सा एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट सॉन्ग होगा स्वीटी कमलेश शेषना योहान रोहान एंड रागिनी के लिए, डैरन श्वेता रविश प्रिशा लुएश आपादू फैमिली साथ जुड़ी हुई है और उनको पसंद आ रहा है इस प्रोग्राम और सब आप सबकी पसंद भी पसंद आ रही है। अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाग से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं, ललिता जीतन जी अपने क्लास में हैं और पढ़ाई भी करा रही हैं और साथ में गाने भी सुन रही हैं, श्याम देवी चरण जी भी साथ जुड़े हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चांदनी जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया, थैंक यू चांदनी जी। आपको भी प्रकाशवंती जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से और बेल्जियम में कह रही हैं कि बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है और मेरा तो दिल कर रहा है, इतनी खिली हुई धूप है और आपको मैं बताऊं प्रकाश जी कि यहां पर भी बहुत अच्छी धूप आ गई है। और साथ में कृष्णा जी भी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं और सभी को ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना ख्याल रखिए, इन्जॉय कीजिए गाने और अपनी जो जी है उसको थोड़ी देर के बाद बूस्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारे काम सभी लोगों को करने हैं, तो एंजॉय कर सकते हैं आप ये वाला गाना सुरेश वाडकर की आवाज और अलका याग्निक की
1: रेट्रो रिदम। RM2 रेडियो मस्ती।

पुराने गीत बजते रहेंगे, यादें महकती रहेंगी। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे रेट्रो रिदम में, तब तक सुनते रहिए आर्यम टू रेडियो मस्ती। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय मेरी तरफ से, पर आपको साथ मिलेगा अभी थोड़ी देर में परी का बॉम्बे टॉकीज़ में।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
7: नमस्कार आदाब. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को खबर मिली है कि ब्लैक रिवर में शेल फ्यूअल स्टेशन के पास एक पाइप से पानी का बहाव हो रहा है. जल जाया ना हो इसलिए एक टेक्निकी टीम को मुरम्मत कार्यों के लिए फौरन वहां भेजा गया. CWA के मुताबिक इंटरनल पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में खामियां हैं जिसमें पिछली सरकार द्वारा 700 मिलियन रुपए निवेश किए गए थे. जल की समस्या के चलते उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वे एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं. खास तौर पर सब्जियां उगाने वाले खेतीहर वे कह रहे हैं कि अभी वे संचालन कर पा रहे हैं लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं. जबकि गन्ना के खेतीहरों का कहना है कि उनके उत्पादन में गिरावट नोट की गई है क्योंकि जल आपूर्ति पिछले नवंबर महीने से कम है. इसलिए वे लंबी अवधि के लिए एक सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं. सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन लेगोविन आज पोर्टलुई की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं. आज सुने गए शुक्रवार को उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया. ये शक है कि वो रेनियन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे. इस मामले में एक दूसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया था. आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है. सभी तमिल दंपति आदि पेरिनत्तम पेरुकुवेजा मना रहे हैं. ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका होता है. इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और विशेष प्रार्थनाएं भी करते हैं. विदेश में इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया है. सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ. इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. B40 ग्रीव लातू क्लिनिक पॉइंट साबल में 63 साल के 63 years old श्री कृतानंद मदरा जो मधु मौशों के पुमदामू के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके घर B40 ग्रीव लातू क्लिनिक पॉइंट साबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. रॉयल रोड एक्वानियो फ्लैक में 69 साल के 69 years old श्री विजय कुमार कासियों जो गुल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज तीन बजे इनके घर रॉयल रोड एक्वानियो फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि दी जाई जाएगी. क्रिमेशन टू डेट 3 PM. शोक में डूबे इन परिवारों से हमें हमदर्दी है.
8: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
9: More music is in the mix.
10: Aaj Azadi hai.
11: Bombay Talkies,
2: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: एग्जैक्टली दोस्तों, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, यही तो हम कहना चाहते हैं कि भाई आप कुछ कहें ना कहें लेकिन दिल की धड़कनें सब कुछ बयां कर देती है। जहां पर शब्द कम पड़ जाते हैं वहां पर हमारा म्यूजिक है ना आपके दिल के जज्बातों को आपके लव्ड वंस तक पहुँचाने के लिए या फिर आपके दिल तक पहुँचाने के लिए। अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ, वंस अगेन आई हूँ आपका साथ निभाने ऑन रेडियो मस्ती। एंड वेल, अभी के लिए जो शो है वो है हमारा बॉम्बे टॉकीज, 2 से लेकर 4 बजे तक बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं विद सम लेटेस्ट ट्रैक्स। सो यहां पर कुछ ऐसे गाने जो आपको अच्छा फील करवाएंगे ऑन दिस मंडे आफ्टरनून, बीट पेपी सॉन्ग्स, बी इट रोमांटिक सॉन्ग्स या फिर कुछ गाने ऐसे जिन्हें आप थोड़ा सा आराम से एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ होने वाला है आपके लिए राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती। और अभी के लिए आपके मूड को सेट करते हैं रफ्तार के इस गाने के साथ, एंजॉय दिस वन।

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti. Bombay Talkies, Radio Masti.
1: Radio Masti.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, इट्स 2:37 जहां पर हम खेलने वाले हैं गेम आपके साथ और आप जीत सकते हैं शानदार इनाम. खेले एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ एंड यू कैन विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर जैन्स लिटिल इंडिया शाही थाली, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC एज फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 16th ऑफ अगस्त एट SBICC पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक. सो इसे जीतने के लिए आपका सवाल, आपको पता है कि ये जो मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल है उसमें काफी कुछ स्पेशल होने वाला है एंड स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का भी. जाने माने कोरियोग्राफर है बॉलीवुड के और आपको हमें बताना है कि धर्मेश सर जो है वो बॉलीवुड की किस फिल्म में नजर आए थे. यस, आपके लिए सवाल है कि पहली बार धर्मेश सर जो है वो बॉलीवुड की किस फिल्म में नजर आए थे और वो फिल्म जो थी वो भी डांस पर ही बेस्ड थी. ये एक छोटा सा हिंट है आपके लिए. सो ये वेल, आपके सही जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर, 5499-1294 पर अपने पूरे नाम और पूरे पते के साथ. सो वेटिंग फॉर राइट आंसर्स, ऑल द वेरी बेस्ट.

So, चलिए दोस्तों यहां पर आपसे पूछा था सवाल दैट धर्मेश सर बॉलीवुड की किस फिल्म में नजर आए थे पहली बार एंड द राइट आंसर इज ए बी सी डी यानी कि एनीबॉडी कैन डांस और इस फिल्म में वो नजर आए थे पहली बार. अब आ रहे हैं मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल यानी कि उत्सव मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो है उसमें वो आने वाले हैं एज स्पेशल अपीयरेंस और चलिए उनका तो इंतजार रहेगा लेकिन अभी के लिए लकी ड्रॉ के बाद कौन बने हैं हमारे लकी विनर. आप है कुसुम गोपोल और आप है वाकवा से आपने हमें दिया है बिल्कुल सही जवाब. कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो वेल कुसुम जी दिया आपने हमें बिल्कुल सही जवाब खेला एमबीसी और राजस्थान वर्क्स के साथ और जीती है आपने 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंस लिटिल इंडिया शाही थाली जिसे आप एंजॉय कर पाएंगी एट उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एट एसबीआईसीसी पाए सुबह 10 से लेकर रात के 9 बजे तक जहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे बहुत कुछ. इंटरनेशनल होम शॉपिंग होने वाला है एंटरटेनमेंट शोज मैजिक शोज फैशन शो लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर का कैनवा के शो होंगे बॉलीवुड ब्लड डोनेशन जो कैंप है वो भी होने वाला है और फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हो रहा है एंड ऑल दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड. सो वंस अगेन आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कुसुम गोपोल जी आप है वाकवा से और दिया

0: में बिल्कुल सही जवाब एनीबॉडी कैन डांस ए बी सी डी यही है राइट आंसर और जीतने के मौके और भी मिलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड अभी के लिए तो हमारा साथ दे रहे हैं आप और जिसके लिए यहां पर ये गेम हो रही थी जो शॉपिंग कार्निवल की हम बात कर रहे हैं चलिए कुछ और डिटेल्स इसे लेकर
1: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC पाए सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC पाए मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
2: RM2
3: रेडियो मस्ती

0: आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: And well friends, with this track हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. मैं हूं परी आपके साथ till 4 PM on RM2 Radio Masti.

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें सुमैरा अकबर अली से. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन लेगोविन आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए हैं और उन पर दो अस्थाई इल्जामात दर्ज हैं, गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए. पुलिस ने उनकी रिहाई पर एतराज जताया और अब वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे. इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती एक क्लिनिक पे की गई. आदसू और रिनन टापू के ऑनसी स्टूपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं. गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था. ये शक है कि दोनों रिनन टापू और मोशरस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे. आज स्टेट हाउस रेजवी में 3 जूनियर मंत्रालयों के लिए शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा. आपको बता दें कि इनमें पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि शामिल हैं. जल की समस्या के चलते उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वे एक मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल वे स्थिति का संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दामों में खासतौर पर सब्जियों के खेतीहरों ने ऐसा बताया. इसके अलावा गन्ने के खेतीहरों ने कहा कि कम पानी की वजह से उनके उत्पादन पर असर पड़ा है, क्योंकि पिछले नवंबर महीने से जल आपूर्ति कम है, इसलिए वे लंबी अवधि के लिए एक सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं. विदेश में पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ. 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे. उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रिजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धमवंती रामकिलावन. श्रीमती धमवंती रामकिलावन पैदाइशी नाम ओमिया, जो सरोज के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रिजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
7: NBC Play, NBC Radio.tv.
8: More music in the mix.
9: Aaj Azadi hai.
10: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
4: Radio Musti.

चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं आपका गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. नए हो या पुराने, सब कुछ मिलता है आपको. हर किस्म के गाने आपके लिए हम चलाते हैं ऑन रेडियो मस्ती. मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल हम रखते हैं. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट सॉन्ग्स, कुछ पुराने गाने भी लेकिन एक नए अंदाज में. अभी के लिए तो बीटाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ में लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, कुछ इंडी पॉप्स और साथ ही कुछ आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. नंबर आप जानते हैं, इट्स 5499-1294. फॉर नाउ टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, लेकिन जैसे हमने कहा एक ट्विस्ट के साथ. सो दैट्स बॉलीवुड रेट्रो एक्सप्रेस, हमारे सभी लिसनर्स के नाम, टू गेट यू इन द मंडे मूड. एंजॉय दिस वन एंड हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून.

और चलिए दोस्तों, बॉलीवुड में तो आजकल यही चल रहा है, दैट ड्रामा एंड फिल्म जो रिलीज होने वाली है. वैसे आदि पुरुष भी इससे पहले रिलीज हुई थी, जो बेस्ड थी ऑन रामायण. और उसके बाद ये हुआ कि फिल्म को इतना ट्रोल किया गया, बी इट द कैरेक्टर ऑफ राम या फिर कैरेक्टर ऑफ सीता या फिर कैरेक्टर ऑफ हनुमान या रावण. सो अब के लिए ये जो नीतीश तिवारी वाली रामायण है, उसके लिए जो मेकर्स हैं, दे आर ट्रेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस के कहीं पर भी लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो. लेकिन फिर से ऐसा कुछ हो ही गया है, जहां पर सीता के किरदार को लेकर लोगों में काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं. काफ़ी कुछ का कहना है दैट साई पल्लवी जो है वो इस किरदार के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, और उनके अलावा अगर आलिया भट्ट को लिया होता तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस. एंड ऐसे ही कुछ मिक्स रिव्यूज़ हैं. किसी का कहना है कि सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि एक्टिंग स्किल्स को भी देखना चाहिए, और लोगों का मानना है कि साई पल्लवी की एक्टिंग स्किल्स बहुत ही लाजवाब है. सो अभी के लिए तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहे हैं, और जैसे हम कहते हैं किसी भी फिल्म के लिए जो पब्लिसिटी है, गुड हो या बैड, इट्स ऑलवेज अ गुड पब्लिसिटी. मतलब वो हमेशा ही एक फ़ायदा ही होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिल्म की बात हो रही है और लोगों में वो जो एक क्रेज़ है कि फिल्म को देखना, कि आगे चलकर इसमें क्या कुछ होगा, तो ये एक बेनिफिट तो मिल ही जाता है फिल्म को लेकर. और अभी के लिए तो बस मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं साई पल्लवी को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर. साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान का किरदार ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं दिखा है, और ये हम जानते हैं कि ये जो किरदार है वो सनी देओल निभाने वाले हैं. एंड लोगों ने कहा कि हनुमान के बिना रामायण बिल्कुल अधूरी है. लेकिन मेकर्स का ये कहना है कि ये जो है वो फिल्म का फर्स्ट पार्ट है, जहां पर सीता हरण के साथ फिल्म एंड होगी, और उसके बाद पार्ट टू आने वाला है, और पार्ट टू में हनुमान जी का किरदार है, उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा. सो ये मेकर्स का कहना है. लेकिन चलिए, सेंटिमेंट्स है लोगों के और छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं. लेकिन अभी के लिए तो उम्मीदें लगी है रामायण फिल्म के साथ, जिसमें नजर आने वाले हैं रणबीर कपूर, उनका साथ देगी साई पल्लवी, और बाकी कुछ दिग्गज एक्टर्स भी हैं जो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. सो करना होगा इसके लिए दिवाली तक का इंतजार. लेकिन अभी के लिए गुड म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं करना. गुड म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड फॉर नाउ वी हैव दिस गाना, दैट्स अ ब्यूटिफुल इंडी पॉप, अमाल मलिक, प्रगति नागपाल की आवाजें. एंजॉय दिस वन.

0: RM2 Radio Musti.
1: तो चलिए दोस्तों, मस्ती भरा ये गाना और इसी गाने के बाद आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499129 354 और रेडी साथ दे रहे हैं आप राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

So well, that was the Chutney song. और अभी के लिए गाना होगा for Umesh Aman Roop working at for George Power Station. अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. Wishing him a happy, happy and a very happy birthday. उनके लिए special wishes that's coming from Shashi गंगा दिन. सभी colleagues जो काम पर हैं और सभी ने भेजा है आपके लिए बहुत सारा प्यार on your special day. हमारी रेडियो मस्ती टीम भी आपको विश कर रही है happy वाला birthday. रोशनी enjoying the songs. Next one goes out for you, sweetheart. And साथ ही यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं श्याम देवीचंद. Dedicating गाना सभी परिवार के नाम. गर्मा गर्म चाय और बॉलीवुड के गाने बस आपके लिए तो हम ये परोस रहे हैं. एंड ललिता जीतन आप भी साथ दे रही हैं. डेडिकेटिंग गाना फॉर सोनिया सिमला पिंकी दिशी प्रिया मानिया एंड सभी आपके टीचर्स के नाम जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं. सो आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर रोमांटिक गाना. और इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. मेरे बाद आ रही है गिनिशा लेकर रफ्तार वाइब्स कुछ और प्यारे गानों के साथ आपको एंटरटेन करेंगी. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक बॉम्बे टॉकीज में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू RM2 Radio Masti.

0: अच्छा आर टू रेडियो मस्ती फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम इट्स ऑलरेडी 4 पीएम
1: आर टू रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार रादाब. अनाबेल सवाबादी, टोनी अपोलो और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बनने वाले हैं. आज स्टेट हाउस रेजवी में सरकार के तीनों सांसद राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ लेंगे. पर्यटन, खेल और पर्यावरण मंत्रालयों को नई सरपरस्ती मिलने वाली है. खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं. मॉरीशस अधिक आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है. बजट 2026-2027 में ऐलान 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है. कृषि जमीनों को ढूंढना, रणनीतिक रिजर्व्स की मजबूती और इलाकाई सहयोग लाकर अधिकारी मुशरस्मी खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं. सांसद वेरोनिक लुगोविन का पति गुलशन आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए. उन पर दो अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं, एक गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए. पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है और वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे. इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती एक क्लिनिक में की गई. आजू और रिनन टापू के एंटीस्टुपेफियन दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं. गए शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार किया गया. ये शक है कि वे रिनन टापू और मुर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे. कॉमनवेल्थ खेलों का अगला संस्करण भारत में लगाया जाएगा. इस साल हमारे एथलीटों ने मॉरीशस के लिए 4 मेडल्स जीते हैं. ग्लासगो में हमारे देश के लिए नया इतिहास रच दिया गया है. रेमी फ्यूये को जूडो में गोल्ड मेडल और पैरा एथलेटिज्म में नोएमी अल्फोंस को 2 चांदी पदक और बॉक्सिंग विधा में मेविन क्लेया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है. और पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ. 14 लोग मारे गए जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल. उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रिजर्वर रोड गांबे में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कुसनावती लीलू. श्रीमती कुसनावती लीलू पैदाइशी नाम तायमान, जो आशा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. अर्थ कल 1 बजे कल दोपहर बाद 1 बजे इनके घर रिजर्वर रोड गांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रिवली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
1: RM2.

बिल्कुल जिसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मस्ती सुनते रहें क्योंकि लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू माय डियर एंड लवली पीपल आउट देयर। सो चुकी हो टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। मंडे 3rd of August 2026। सो आप सभी लोगों का स्वागत है ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। अगस्त का महीना आ गया है एंड हाथ जोड़ के हम प्रे करते हैं कि सभी लोगों के लिए ये जो महीना है एकदम मैजिकल हो। सो थैंक यू सो मच जी फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती एज योर रेडियो पार्टनर एंड फॉर ट्यूनिंग इन एंड ऑफ कोर्स गणेशा साथ देंगे रात के 7 o'clock तक इन योर रफ्तार वाइब्स एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द फिल्मी राइज। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। लेके जाएंगे बॉलीवुड की दुनिया में फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड गानों के लिए एंड एज वेल योर ट्रैफिक अपडेट्स, योर स्पोर्ट्स न्यूज, कुछ कैडूज यानी कि गेम्स भी होंगे जहां पे आप जीत पाएंगे कुछ ऐसे लवली लवली वाउचर्स। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड एंड टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, फिलहाल के लिए ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना। कोई ट्रैफिक अपडेट है तो प्लीज हमें आप अपडेट कर सकते हैं ऑन 5499-1294 पर।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: सिकम की डिजिटल सेवा के संगे आप अपन कुताशों देखे सकबा अपन महीना के मौसवाली ते सकबा चुकाए आप तोहर अप्लीकेशन कहाँ पहुँचल बा ऑनलाइन पूरा सुरक्षा से ट्रैक करे सकबा सब औपचारिकता के पूरा करे में कमती समय लगेला और दूसर दिने जिंदगी के उस सब खास पल खातिर जस्सी समय मिलेला जो सच्चाई में मायना रखेला जस्सी जानकारी खातिर सिकम से संपर्क कर या हमनी के वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
4: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août, depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center, Buklima, La Flora.
0: RM2
1: Radio Musti
5: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Musti, your number one Bollywood station.

0: You're listening to a Radio Mustee.
1: RM2
2: Traffic Update.
3: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आर वन टू रेडियो मस्ती चेकियो टाइम 4:17 हो चुके हैं और अटेंशन टू ऑल ड्राइवर्स राइट नाउ गजवी से फिनिक्स डायरेक्शन में इस वक्त यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रिपोर्ट हो रहा है और अभी तक किसी एक्सीडेंट की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग पर है. सो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और केयरफुली प्लीज़ केयरफुली कीजिए. और अगर आपके पास इस ट्रैफिक सिचुएशन या किसी इंसिडेंट की कोई अपडेट हो तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर लीजिए ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जरूर इन्फॉर्म करिए. सो ड्राइव सेफ एंड थैंक यू फॉर कीपिंग एवरीवन इन्फॉर्म इन एडवांस एंड चलिए कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: रेडियो मस्ती.

के लिए सो जितने भी हमारे ड्राइवर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हम तो बस इतना कहेंगे कि ड्राइव केयरफुली जी, आराम से गाड़ी चलाना, बस म्यूजिक का वॉल्यूम, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, बिकॉज वी हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती। एंड फॉर दोस जो अभी निकल रहे हैं काम से, वेल आई नो इट्स अ मंडे और मंडे ब्लूज तो सबको होता है, हो सकता है दैट यू हैड अ ग्रेट वीकेंड, और आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम पे जाने का, एंड

0: हर हार्ड डे क्योंकि ऐसा ही होता है हर मंडे को बट स्टिल वी आर हियर टू पंप अप अ लिटिल बिट योर मूड. वैसे ही अगर आप अभी के लिए घर पे हो आराम फरमा रहे हो सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स गर्मा गर्म चाय पी लीजिए गर्मा गर्म कॉफी पी लीजिए कीप ऑन रूटिंग योर सेल्फ एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. और फिलहाल के लिए आई जस्ट वांट टू विश अ मैजिकल बर्थडे टू यू करिश्मा.
1: You're listening to Radio Masti.

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: Le gaspillage d'énergie nous concerne tous. Afin de préserver la stabilité de notre réseau électrique, certaines activités non essentielles alimentées par le réseau sont désormais interdites. Sont notamment concernés l'éclairage extérieur ainsi que décoratif non essentiel à la sécurité publique, l'illumination des façades à des fins esthétiques, les panneaux publicitaires lumineux, les fontaines décoratives ainsi que l'utilisation inefficace des systèmes de climatisation. Les services essentiels tels que les établissements de santé, les services d'urgence, services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les infrastructures de transport maritime et aérien, les sites de production d'énergie, les services de transmission terrestre, radio et télévision et tout autre site ou service désigné par l'Energy Efficiency Management Office ne sont pas concernés par ces mesures. Vous constatez un gaspillage d'énergie? Signalez-le par WhatsApp sur le 57 57 45 34 ou sur le 52 53 01 30. Chaque geste compte. Ensemble, économisons l'énergie pour un avenir meilleur.
2: RM2 Radio Musti
3: Raftar Vibes Filmy Rides
2: RM2
4: तो चलिए जी लेके जाएंगे ऑन योर फिल्मी राइट्स राइट नाउ ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती टोल दोस हु आर ड्राइविंग जी हाँ भी कंसंट्रेट कर सकते हैं लेकिन जो बगल में बैठे हैं उनको बोलना टू पार्टिसिपेट इन द गेम है क्योंकि फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट दिस लवली गेम आपके और हमारे बीच में जी हाँ इट्स अ गेम विच इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड सो फिलहाल के लिए यू कैन प्ले विद एमबीसी एंड राजस्थान वर्क्स लिमिटेड एंड विन दिस एक्साइटिंग प्राइस जी हाँ एक्चुअली यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन नॉट वन नॉट टू नॉट थ्री लेकिन चार एंट्री टिकट्स और एक फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली आदि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो है पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी आज फ्रॉम द 12th ऑफ अगस्त एंड इट्स गोइंग टू हैपन फ्रॉम द 12th टिल द 16th ऑफ अगस्त तो चलिए ये होने वाला है आज एसबीआई सीसी ऐप पर या सुबह खुल जाएंगे या 10 बजे रात के 9 बजे तक यानी कि लेट नाइट शॉपिंग आप कर पाओगे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे 5 डेज ऑफ शॉपिंग एंटरटेनमेंट और इवन फैमिली फन फीचरिंग इंटरनेशनल होम शॉपिंग एंटरटेनमेंट शोज होगा एंड द मैजिक शोज फैशन शो लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन स्पेशल अपीयरेंस बाय द बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश एंड कैनवास शो ब्लड डोनेशन कैंप फूड फेस्टिवल और भी बहुत कुछ होने वाला है इट्स ऑर्गेनाइज बाय द इवेंट वर्क्स लिमिटेड तो चलिए जी फिलहाल के लिए पूछेंगे एक सवाल आपको सही जवाब देना है ऑन 5 4 9 9 12 94 जी हाँ ट्राई योर लक अगर लक ने साथ दे दिया सो यू कैन बी माई लकी विनर राइट नाउ राइट वे ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा डायलॉग आपको बस मुझे बताना है ये कौन सी मूवी से लिया गया है
5: परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं
4: बिल्कुल जी और आने वाला जो कुछ ही समय में होगा पता चलेगा कि कौन है लकी विनर आपको बस मुझे बताना है ये जो डायलॉग है कौन सी मूवी से लिया गया है द राइट आंसर राइट नाउ ऑन 5499-1294 पर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ देन ऑन लिखिए यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ विद द राइट आंसर तो चलिए जी ये सवाल बहुत ही आसान है ये डायलॉग कौन सी मूवी से लिया गया है
5: प्रतिष्ठा अनुशासन ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं
4: बिल्कुल जी 5 4 9 9 12 94 बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर यू कैन विन 4 एंट्री टिकट्स 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली व्हिच इज गोइंग टू हैपन एट

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: तो चलिए जी, टाइम बीटा चला जा रहा है, 4:42 हो चुके हैं। आज हम मंडे 3rd of August 2026 बॉलीवुड की दुनिया से निकल के लेके जाएंगे स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ अरविंद जी। ऑलरेडी ऑल सेट फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। गुड आफ्टरनून टू यू।
4: Good afternoon, आपको गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। फीफा का प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो गरम तेल में। एक तो उसका जो प्रोजेक्ट था स्टेक्स बेचना यानी प्राइवेटाइज करना फुटबॉल कंपटीशन को, ये प्लान तो डूब गया। अब इन्फांटिनो भी लगता है डूबेगा साथ साथ। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो को लिखकर उसका सपोर्ट वापस लेना चाहता है और अपने प्लान को, जो सेल ऑफ स्टेक्स इन फीफा कंपटीशन टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इसको स्क्रैप करना चाहता है। फीफा ने पहले से धमकी दी थी लीगल एक्शन को लेकर और वेल्स ने पब्लिकली बैकिंग विथड्रॉ किया। ऐसे में इन्फांटिनो के लीडरशिप पर प्रश्न उठ रहे हैं। यूरोप, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, UEFA, CONCACAF, सब लोग स्टेटमेंट निकालकर इस प्लान का खंडन कर रहे हैं। फीफा और इन्फांटिनो एक कमर्शियल सब्सिडियरी बनाना चाहते हैं अपने मेन इवेंट के लिए, जिसमें वर्ल्ड कप और बाकी कंपटीशन भी शामिल हैं। ऐसे में अब ये प्लान आगे नहीं जाएगा तो इन्फांटिनो के लीडरशिप पर प्रश्न उठ रहे हैं और बहुत जल्द उसे जाना भी पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। चैंपियंस लीग के प्लेऑफ के ड्रॉ निकाले गए। आज सेल्टिक को निकाला गया है ऑस्ट्रिया की टीम LASK के खिलाफ, जबकि रेंजर्स का मुकाबला लाने या इबेरिया टिबिलिसी से होगा। ये जॉर्जिया की टीम है यूरोपा लीग में। अब हार्ट्स जो है वो आर्नुस या फिर सबा अज़रबैजान के खिलाफ खेलेगा। हार्ट्स की टीम जो यूरोपा लीग में है स्टर्म ग्राज से हारने के बाद, वो भी इस कंपटीशन में है। तो आगे देखा जाएगा अगले राउंड में कौन सी वो टीमें होंगी। इंग्लैंड की टीमें अभी फाइनल स्टेज ग्रुप स्टेज में आने वाली हैं। इस बीच आज सेल्टिक अपना पहला मैच खेलेगा नया स्कॉटिश प्रीमियर लीग सीजन के पहले फेज में। उसका मुकाबला डंडी से होगा। बता दें रेंजर्स ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था। इंग्लिश लीग कप के प्रीलिमिनरी राउंड में आज एक मैच है, यॉर्क का मुकाबला क्रोले से, और कुछ फ्रेंडली मैच भी खेले जाएंगे जिनमें प्रीमियरशिप की टीमें तो नहीं है। प्रीमियरशिप की टीमों में से कल लिवरपूल की हार हुई लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। लिवरपूल अब दो और मैच खेलेगा अपने एनफील्ड रोड में, उसके बाद प्रीमियर लीग शुरू। लेकिन लिवरपूल का जो परफॉर्मेंस रहा सेकंड हाफ में लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ कल, या यूं कहे आज सुबह, उसको लेकर कोच इराओला काफी परेशान है। खबर है प्लेन में उसे नींद भी नहीं आई। अब सीजन शुरू होगा तो कितनी नींद उड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। सीजन शुरू होने से पहले न्यूकासल यूनाइटेड में समस्याएं गंभीर। एक तो उसका कोच एडी हाउ चला गया, कई खिलाड़ियों को बेचा जा रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ी आ भी रहे हैं। गोलकीपर न्यूकासल यूनाइटेड ने लुकास होनीसेट

0: को साइन किया वो ब्रागा का गोलकीपर रहा 25.7 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में। अभी उसने एक गोलकीपर को खरीदा था एवन यूएन रेंस से, लेकिन वो चाहता है कि और खिलाड़ी सामने आए। न्यूकासल यूनाइटेड में आ गया है होने सेक्च अपना मेडिकल पूरा करने के लिए, तो अब न्यूकासल यूनाइटेड काफी पैसे मिल रहे हैं तो नए खिलाड़ियों को खरीदने के पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्द करना होगा। बहुत खिलाड़ी अभी नहीं बेचे जाएंगे क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है। न्यूकासल यूनाइटेड से ये भी खबर है कि ब्रूनो गुमारेस का जो प्रस्ताव था आर्सेनल ने भेजा था उसे द मैगपाइज़ ने रिजेक्ट कर दिया है। ब्राजील के इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए ब्रूनो गुमारेस जो न्यूकासल यूनाइटेड का कप्तान है उसे नहीं जाने देना चाहते हैं। क्रिकेट, आने वाले श्रीलंका टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम में जम्मू और कश्मीर के फास्ट बॉलर ओकिब नबी को पहली बार के लिए बुलाया गया है। दो मैच खेले जाएंगे श्रीलंका में। ओकिब नबी जो 29 साल का है जम्मू और कश्मीर का, वो जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह जो घायल है इसीलिए उसकी जगह पर ये आ रहा है। नबी जो 104 विकेट ले पाया है दो रणजी ट्रॉफी सीजन में, जिसमें 60 पिछले सीजन रहे जहां पर उसका बहुत अच्छा रोल रहा। जम्मू और कश्मीर ने जब पहली बार के लिए रणजी ट्रॉफी जीती थी वो इंडिया ए स्क्वाड में भी था, जो श्रीलंका गया था जहां पर उसने 6 विकेट लिए थे दो फर्स्ट क्लास मैचों में। शायद इसीलिए श्रीलंका में उसे फिर से जाने का मौका दिया जा रहा है। सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू टुमारो मॉर्निंग। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती विद गिनीशा।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: Jumbo, Quality Déco fin lance sur Extravaganza Sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds par 100 roupies. Des pieds par 4 pieds à portier, 295 roupies. Granit, 8 pieds par des pieds, 2000 roupies. Lavoie à portier, 3500 roupies. SPC Flooring, Lordoise, Luminaire, Sanitaire, Robinetterie et plaisir les autres produits à bas prix incroyable mais vrai. Promotion là, 10 pour des semaines seulement. Pour plus de renseignements, check nos pages Facebook Quality Déco.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2, Radio Masti.

0: बिल्कुल जी सुनते रहो और अग्निशा साधे की रात के 7 o'clock तक इन योर रफ्तार वाइब्स ऑफ कोर्स लेके जाते हैं ऑन योर फिल्मी राइट्स और फिल्मी राइट्स में अभी फिलहाल के लिए हमने पूछा है एक सवाल बहुत ही आसान और बस फिलहाल के लिए इतना बोल सकती हूँ कि इतने सारे सही जवाब हमें मिले थैंक यू सो मच जी फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर सेंडिंग मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ सभी लोग जो है ना बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जब हम बोलते हैं फुल नेम और फुल एड्रेस तो पक्का यू मेक इट शो कि आप लोग हमें ऐसे ही भेजे तो चलिए जी फिलहाल के लिए I've got 4 entry tickets and 1 food coupon for the gents Little India Shahi Thali for the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC जो है होने वाला from the 12th of August till 16th of August at SBICC Akpai और सुबह खुल जाते हैं 10 बजे रात के 9 बजे तक you can do some late night shopping जहां पे आप लोग जो है experience कर सकते हैं international hall shopping entertainment shows magic shows fashion shows live performance by Indian Idol singer Parinaya Jain special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh sir and Kanma jo hai show blood donation camp food festival bahut kuch hone wala hai ji so bas aise hi yun hi saath dete rehna aur participate karte rehna on our into radio masti aap bhi ban sakte hain lucky winner humne pucha ek bahut hi aasan sa sawal
1: parampara pratishtha अनुशासन ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं
0: बिल्कुल जी और आने वाले अभी कुछ ही सेकंड में हम अनाउंस करने वाले हैं आज का लकी विनर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं द राइट आंसर इज मोहब्बत है जी हां सभी लोगों ने सही जवाब दिए और कुछ कुछ हां जी गलत जवाब भी मिले लेकिन इट इज द वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन फ्रॉम द मूवी मोहब्बत और आज का लकी विनर है हमारी प्यारी सी जो है हमारी शालिनी अश्विन हुला कंग्रेचुलेशंस यू आर द लकी विनर बिल्कुल जी आज का लकी विनर जो है हमारी प्यारी शालिनी अश्विन हुला और रहती हैं पासमाले अब क्यू पेपर सो कंग्रेचुलेशंस माय ब्यूटीफुल यू आर विनिंग द 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल जो होने वाला है फ्रॉम द 12th टिल द 16th ऑफ अगस्त एट SBICC अटपा सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग और बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं दिल छोटा नहीं करते आप भी जीत सकते हैं रोज विल बी हैविंग लवली गेम्स आके और हमारे बीच में ऑन रेडियो मस्ती
2: नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था
3: RM2 रेडियो मस्ती

0: आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ऑन ऑल राइट रेडियो में से इन योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे गिने लेके जाते हैं फिल्मी राइट्स पर विद सम धमाकेदार गाने। 5:12 हो चुके हैं, सो वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम। ऐसे दोस्तों, जिंदगी एक रेस नहीं एक सफर होती है। हर दिन हमें एक नया मौका देते हैं मुस्कुराने का, सीखने का और किसी की जिंदगी में एक छोटी सी खुशी लाने का, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं ट्रू म्यूजिक आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। और अगर आज ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या दिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो याद रखिए कि हर सफर का एक मंजिल होता है। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी काइंडनेस और पॉजिटिव सोच ना सिर्फ आपका दिन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी हमेशा खुशियां दे सकते हैं। रोड पर गुस्सा नहीं, रिस्पेक्ट दीजिए, हॉर्न कम बजाइए, स्माइल ज्यादा कीजिए और हो सकता है आपका एक छोटी सी जेस्चर जो है ना, उसे किसी का पूरा दिन बदल जाए। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी नाइस, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा याद रखें कि जिंदगी बहुत कीमती है। हर सफर से ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा सलामत घर पहुंचे। बिल्कुल, सो हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड ड्राइव सेफली माय डियर, एंड कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी व्हेयरएवर यू गो इन लाइफ। और हमेशा याद रखना कि ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मसी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। सो 5499124 पर स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड आप हमें भेज सकते हैं अपने डेडिकेशन 5499124। और फिलहाल के लिए चलिए एक खूबसूरत सा गाना हो जाए स्पेशली फॉर यू, और थोड़ी देर में हम आपको देंगे सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: एक्टिव
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: बिल्कुल जी, 5:22 हो चुके हैं। लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट लेकर आए हैं हम अपना रेडियो मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम पोर्ट लुइस एज यूजुअल द कैपिटल। और पोर्ट लुइस से साउथ की तरफ ट्रैफिक काफी स्लो मूविंग पर है, और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा की तरह एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए। और नॉर्थ जो है मोटरवे पर भी लंबी क्यूज देखने को मिल रहे हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट जस्ट लीविंग द कैपिटल। दो तीन राउंड अबाउट के बाद जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा स्लो मूविंग पे आ जाते हैं, एंड देन ट्रैफिक जाम है, लेकिन व्हीकल्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। रेजुई से फिनिक्स तक ट्रैफिक स्लो मूविंग है, और फिनिक्स से साउथ की तरफ भी ट्रैफिक स्लो मूविंग दिखा रहा है। प्लेन लूजों से पोर्ट लुइस की तरफ ट्रैफिक फिलहाल स्मूथ मूविंग पर है, तो इस रूट पर ड्राइव रिलेटिवली इजी रखें, और पोर्ट लुइस पहुंचते ही यू विल इजिली गेट इन टू द ट्रैफिक जैम। सुबह बसें और रोजिल साइड पर हमेशा की तरह स्लो मूविंग ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और कैथबोन से ला लुइज की तरफ भी यूजुअल ट्रैफिक जाम है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए। और वेदर रोड यूज़ करने वाले सभी ड्राइवर्स से गुजारिश है कि ड्राइव केयरफुली है, और इस रोड पर ट्रैफिक स्लो मूविंग है, इसलिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और स्पीड कंट्रोल में रखें। ये था आपका लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट। सो ड्राइव सेफली, और हमेशा की तरह सीट बेल्ट लगाएं, और मोबाइल फोन जो है ड्राइव करते समय यूज ना कीजिए। सो बन होती ऑल ऑफ यू।

0: फिलहाल के लिए वी गोना चेंज द बीट अ लिटिल बिट टू ऑल लकी अली फैंस राइट नाउ जो हमें ये सुन रहे हैं ऑन अ रेडियो मस्ती. दिस वन गोज आउट टू यू. तो चलिए जी रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए. गेट रेडी टू सिंग अलोंग विद मी. Such a beautiful one, straight away from my heart to yours. Let's all enjoy it on your number one radio station.
1: RM2, Radio Masti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2।
2: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू गणेशा राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मसी एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे फिल्मी राइट्स पे तो लेकर ही जाते हैं। 5:32 हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। ट्रोल दोस्तों ड्राइविंग, हेलो जी, ड्राइव केयरफुली और हमेशा याद रखे दोस्तों कि हर मुश्किल वक्त जो है जिंदगी में वो तो गुजर ही जाते हैं, और हिम्मत बनाए रखे, उम्मीद कभी मत छोड़ना, बेटर डेज आर ऑलवेज अहेड एंड जियो अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो। 5491294 पर your dedications. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए the next one goes out to all Ghamasa family की तरफ के लिए जो बॉम्बो के रहने वाले हैं, और that's coming from अर्मिला जो साथ दे रही हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। एंड वेल, फिलहाल के लिए I've got you the next one जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन TikTok RM2 रेडियो मस्ती है, वो साथ दे रहे हैं और हमें देख रहे हैं लाइव। ईशानी, टयाब, प्रेमा, वी Vananta, and we do have the next one for you, Shreya and Tanvir ke liye, and AG, haan ji, hum bilkul theek hai, Amira, Ella, and we have Rosida, Darshan, and Honey, the next one, Krishna, and Shahil, the Jamaican boy, kaise ho aap, ye agla gana especially for you, my dear, on 5499-1294 par, chaliye, let's check it out, kisne kisko yaad kiya hai, and we've got you the next one, ji, especially for your niece, Anne, aur unki जो सिस्टर इन लॉ बेबी है, इंग्लैंड से है, उनके अंकल कृष्ण, आंटी जयश्री, सेइंग दैट दे रियली लव यू सो मच। हेलो जी, कैसे हो जी? एकदम जकास जी, एकदम बढ़िया है, और आप हो? रेखा ननकू जी, हेलो जी मामी, कैसे हो आप? द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल, एंड वी डू हैव अ बेबी अर्शद, द नेक्स्ट वन फॉर यू फ्रॉम रेबिका की तरफ से, एंड दिया, एंड वो बोलते हैं ऑन दिस कोजी रेनी डे, आप मुझे बताइए पोम्बला में बरसात हो रही है, सो रेन ड्रॉप्स play their music outside, inside preparing dinner together. अच्छी बात है, आपके हस्बैंड अविश और जो बेटियां हैं मेगन एंड यूशना, sending you lots of love and good vibes and every listeners के लिए thank you so much. वो बोलते हैं may your home जो है be filled with good food, laughter and happiness from Pont Blanc side दे रहे हैं दिया, so thank you so much जी। तो चलिए जी, without wasting no time, let's hit the next one.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: पांच वर्ष के 38 मिनट्स हो चुके हैं और फिलहाल के लिए टाइम फॉर योर लेटेस्ट फैशन टिप्स ऑफिस विंटर स्पेशल। जी हाँ, लेडीज के लिए ऑफिस के लिए विंटर फैशन का मतलब सिर्फ वार्म रहना नहीं होता है बल्कि स्टाइलिश भी तो दिखना है ना लेडीज। ऐसे आज का टिप है एक स्मार्ट ब्लेजर या लॉन्ग कोट के जो न्यूट्रल कलर्स हैं जैसे ब्लैक बेज ग्रे कलर एंड नेवी के साथ पेयर कर सकते हैं। इसे आपका ऑफिस लुक एलिगेंट और प्रोफेशनल जरूर लगेगा। जी तो आपको बता दें लाइट स्वेटर्स को फॉर्मल ट्राउजर्स या पेंसिल स्कर्ट के साथ आप मैच कर सकते हैं। अगर ड्रेस पहन रहे हो तो वार्म टाइट्स और एंकल बूट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे एंड एक सॉफ्ट स्कार्फ और सिंपल एक्सेसरीज आपके विंटर आउटफिट को कंप्लीट करते हैं। और ध्यान रहे कि ज़्यादा हैवी ज्वेलरी की जगह मिनिमल पीसेस चूज करें फॉर अ क्लीन ऑफिस लुक। और सबसे ज़रूरी बात, कंफर्टेबल फुटवेयर पहन लीजिए, स्पेशली अगर आपको दिन भर ट्रैवल या वॉक करना पड़ता है। स्टे वार्म, स्टे कॉन्फिडेंट और हर दिन ऑफिस में अपना बेस्ट स्टाइल जो है आप कैरी कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अस एवरी आफ्टरनून ऑन आवर इंटरव्यू Radio Masti in your Raftar Vibes for your fashion tips.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है, 5:44 हो चुके हैं गणेश ऑन द माइक साथ देने के लिए. वी हैव सच ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग गाने एंड आई रियली होप दैट ईच एंड एवरीवन यू गाइस आर रियली एंड एंजॉयिंग दीस लवली गाने. तो जितने भी हमारे ड्राइवर्स आप लोग ड्राइव कर रहे हो, सो प्लीज ड्राइव केयरफुली. हमेशा हम कहते हैं ना, आराम से गाड़ी चलाना एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, जहाँ पे गानों के साथ साथ वी कीप ऑन स्प्रेडिंग गुड वाइब्स एंड लव आप लोगों के लिए. तो हमेशा हम यही कहते हैं कि जिंदगी को आप बड़े आराम से जियो और अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि आपकी मुस्कान किसी और की उम्मीद बन जाए. और ऐसा हो सकता है. वैसे जो चीजें आपके पास हैं उनकी कदर करना सीख लीजिए. और ग्रेटिट्यूड से शुरू हुआ जो दिन है ना, अक्सर खुशियों पर खत्म ही होता है. और फिलहाल के लिए, इफ यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू माय डियर. एंड चलिए, वी डू हैव हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं, जैसे कि दिव्या रेडी. हे माय ब्यूटीफुल बेब्स, शी इज वॉचिंग मी लाइव ऑन टिकटॉक और ऑन टू रेडियो मस्ते. एंड अगला गाना स्पेशली फॉर यू एंड फॉर आतिश के लिए. एंड वी हैव तीन जो मुस्कुराते हैं, जैसे बोलते हैं ना, दोनों तीनों जो है मिलके हमारा साथ दे रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड मदर इन लॉ के लिए जो किचन में खाना बना रही है, नीचा, ये अगला गाना आपके लिए. प्रणाम टू यू आश्लेष. आश्लेष वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक. अक्षय सिचन फ्रॉम सटी रिविया जुरा पास. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. एंड डॉलर तिरन, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू सावित्री. एंड चलिए जी, वी हैव ये अगला गाना फॉर यू राकेश, बिंदिया, सावित्री, अश्मी. एंड मांटी के लिए आपके जो मम्मी हैं, पापा सत्यानन और भाई राजीव, बहन मानसा के लिए, माया एंड डिम्पल के लिए. एंड वी हैव मुजम्मल, वालेकुम अस्सलाम टू यू एज वेल. रेशिका एंड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, समवन इज वाचिंग अस एंड सेइंग अ गुड आफ्टरनून मॉरिशियस. हे आशी कपूर, हे माय ब्यूटीफुल, हाउ आर यू. सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू अश्नी. वी हैव अंजलि, वी हैव सुनीता, रक्षा एंड एवरीवन हु इज वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक. थैंक यू सो so much. To chaliye ji, Lalita ji tan ye agla gana aapke liye. And you're cooking and listening to me right now, full on volume laga ke aapke radio par. So behna, God bless you every day. Thank you so much. To all those jo abhi saath de rahe hain, ye agla gana especially for you, Vishal. Happy birthday.

खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा हमेशा के लिए आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। जी हाँ, इसमें गिने शाम्पमा आएगा कना भी है रात के 6 बजे तक। और फिलहाल के लिए जस्ट रिमाइंड यू, हम थोड़ी देर में बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद अगर म्यूजिक कंटिन्यूज। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। और चलिए जी, एक और डेडिकेशन, थोड़ी सी दो तीन और आ गई है। सो प्रणाम जी, मैं हैप्पी मंडे, गॉड ब्लेस यू। एंड बेटी नुटिश्ता के लिए डामर अश्विन, हर्षिनी, निवांची, दिगंबर फैमिली के लिए सिस्टर सुरेखा, विकी, निखिल, हुलाश, सुशोहन, रंजया। एंड चलिए जी, ये अगला गाना मामातीश यानिश रंजया फैमिली है के लिए जो वेज पुलाव पका रहे हैं। वी सचिनी कटोमिली एंड सलाद, यम्मी यम्मी टू ऑल दोस जो ऑलरेडी किचन में घुस चुके हैं। कुराज टू यू एंड गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम इन माय किचन रेडियो मस्ती। हे थैंक यू सो मच एंड कुकिंग पटोल एंड हुगाई, यस सुया बिहारी फ्रॉम कंगमा। तो चलिए जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? शहनाज जोगी फ्रॉम रिविया जोरंपा। द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग योर रेडियो मसीह एज योर रेडियो पार्टनर। एंड चलिए जी, वी डू हैव आशी कपूर, इज शी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ। एंड वी डू हैव आकाश एंड वी हैव केके गीतिका। द नेक्स्ट वन गोज आउट टू डैड विनेश, मम्मी सुकवाई एंड सुकवानी एंड अजुदा एंड फुली फैमिली के लिए जॉन क्लोड सांगो फ्रॉम फ्रांस। रूबी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू बी ए। एंड we have everyone, we have Koo as well watching us live on TikTok.

0: तो चलिए जी, गुड म्यूजिक कंटिन्यू आफ्टर द समाचार. अभी के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड एंड चेक योर टाइम इज ऑलरेडी 6 पीएम.
1: आरएम2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

समाचार बुलेटिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। वेरोनिक लुगोविन जूनियर कला एवं संस्कृति मंत्री की हैसियत से स्टेप डाउन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे उनके पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी के चलते ये फैसला लेने की मांग की। अनाबेल सावाबादी, टोनी अपोलों और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बन गए हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में अनाबेल सावाबादी और टोनी अपोलों ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। खाद्य क्षेत्र के लिए

0: हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मुर्शद सदीक आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच जंग बंदी की संभावना उभर रही है, लेकिन ईरान अमेरिका से बात करने से इनकार कर रहा है। नमस्कार और आदाब। प्रधानमंत्री ने कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से अपने पद से स्टेप डाउन करने की मांग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वेरोनिक लुगोविन के पति की गिरफ्तारी के कारण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अनाबेल सवाबादी, टोनी अपोलो और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बने हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में टोनी अपोलो और अनाबेल सवाबादी ने राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल के सामने शपथ ली। चुनाव क्षेत्र नंबर एक ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी वेस्ट अनाबेल सवाबादी नई जूनियर मंत्री बन गई हैं। मेबर्ग और प्लेन मानियों के सांसद टोनी अपोलो को खेल मंत्रालय का सह संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि चुनाव क्षेत्र नंबर 20 बुबासें पिची त्रिविया की सांसद कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय की जूनियर मिनिस्टर से जूनियर पर्यावरण मंत्री बनी हैं।
1: Gilbert Tony Apollon do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law.
2: I, Marie Annabelle Andelena Savabadi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God.

0: इस समारोह के बाद
1: प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने, हम आपको बता रहे थे कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वियोनिक लेगोविन से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: Mais seulement, perception du monde, pourquoi tu as l'air de... À cause ça, une cause, les banlieues, je suppose, les origines, step down.
3: Oui, finis step down.
4: Le poste, c'est par contre pour Véronique Legovin ou pour Médine Kikana là-bas?
2: Non, parce qu'il est toujours une représentation de violence, il n'y a aucune preuve contre lui, mais le fait qu'il y ait l'enquête, il y a une sensation qui est meilleure, step down. Aussi, mon dieu.
1: गुलशन गोविंद आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए। उन पर दो अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज हैं, एक गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है और अब वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती क्लिनिक में की गई। आजू और रिन्यून टापू के औंसी स्टुपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये शक है कि वे रिन्यून टापू और मॉरिशस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। काविंता पिसो करुणा लालू।
5: दोपहर को गुलशन गोविंद को आजसू के वेस्टर्न डिवीजन के अधिकारियों की सुरक्षा में रिवियनवा अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट प्रशांत बिसुन के समक्ष मामले के जाँच अधिकारी ने तथ्यों को पेश किया। आरोपी के खिलाफ दो अस्थायी आरोप दर्ज किए गए हैं, कैनाबिस आयात करने का षड्यंत्र और कैनाबिस की रोपाई। गुलशन गोविंद पर रिन्यून में 156 किलो कैनाबिस मॉरिशस लाने की साजिश रचने का आरोप है, जिसकी लागत का अनुमान 234 मिलियन रुपए का है। मॉरिशस के लिए निर्धारित ये खेप 26 जुलाई को भापानो रिन्यून में जब्त की गई थी। दूसरे आरोप के तहत शामागल स्थित उनके घर की छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर

0: से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 कैनाबिस के पौधे बरामद किए गए, जिनकी लागत 20,300 रुपये की होगी। गुलशन गोविंद ने पुलिस को बताया कि ये केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे। घर से बरामद मेटाडोन की एक शीशी के संबंध में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने नशे की लत से बाहर निकलने के प्रयास में ये दवा प्राप्त की थी। जांच के लिए उनके वाहन को भी सुरक्षित रखा गया है। पुलिस फिलहाल सेफ सिटी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि उनकी गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाया जा सके। पुलिस ने दोनों मामलों में गुलशन गोविंद की जमानत का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि उनके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। उनको पुनः मुका डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
1: अन्य खबरों में, खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मुर्शद का आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-2027 में ऐलान 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। कृषि जमीनों को ढूंढना, रणनीतिक रिजर्व्स की मजबूती और इलाकाई सहयोग लाकर अधिकारी मुर्शस में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। अब्देल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारन का विवरण।
2: मॉरिशस के खाद्य आयात पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में ये 57 बिलियन रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 61 बिलियन रुपए हो गया। देश से बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जाने से रोकने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बजट 2026-2027 में 25x35 परियोजना की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य है 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का कम से 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाए। शुक्रवार को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पारित होने के बाद इस राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी फागई को सौंपी जाएगी। सरकार ने 2035 तक खाद्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली कृषि भूमि को बढ़ाकर 25,000 बीघा करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए भूमि उपलब्ध है। अल्टियो प्रॉपर्टी के सीईओ डेविड मशाल कहते हैं,
3: il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut tirer la meilleure utilisation des terres à Maurice entre bien sûr les principales cultures comme la canne à sucre, l'utilisation des terres marginales qui sont unused, il y a quand même beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui à Maurice, et tous les enjeux de la diversification agricole pour que ce soit sustainable à Maurice.
2: ये योजना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती है, विशेष रूप से मध्य पूर्व और यूक्रेन में जारी संघर्ष मॉरिशस की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण कुछ विशेषज्ञ कृषि के लिए मार्शल प्लान लागू करने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का पक्ष ले रहे हैं। अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तेंगाव कहते हैं,
4: aujourd'hui secteur privé, gouvernement, particulièrement les entreprises coopératives, si joignent tout ensemble pour un Marshall Plan, un plan d'avenir pour nous capables d'épanouir nous-mêmes pour nos alimentations. Mais ce qui vise, c'est l'imagination, l'innovation et suffisamment de finances pour capable coordonner tout ce travail-là. Alors Maurice, avec son voisin, surtout Madagascar, qui est un grenier de sa région-là, nous capables de travailler ensemble et nous avons un produit capable de coûter très meilleur marché quand nous pouvons un système compétitif.
5: Quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est qu'on parle également du capital humain. Donc derrière tout ça, il faut également travailler sur le capital humain pour que plus on est soudé, plus on peut se battre, plus nous pourrons gagner ensemble.
2: इलाके के खाद्य सुरक्षा के संभावित केंद्र के रूप में उभरने के बीच विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुनील बुधू ने मॉरिशस में एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वे बताते हैं,
6: pense pour la création d'un agricultural processing zone. C'est un nouveau concept et qu'étant donné qu'nous avons un accord commercial au niveau de l'Afrique avec plusieurs pays et l'Afrique qu'on a une abondance de produits agricoles. Et que mon pensée, nous sommes capables de faire une chaîne de valeur entre Maurice avec un pays dans la région. Nous amenons ce produit-là, nous transformons. Quand nous sommes capables de faire ça, vraiment, nous sommes capables de faire Maurice vin and a destination de processing.
2: बजट के पारित होने से कृषि क्षेत्र में विदेशी श्रमिकों की तेज भर्ती का रास्ता भी खुल गया है. साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एसटीसी द्वारा एक नेशनल फूड रिजर्व स्थापित किया जाएगा.
1: उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं. गन्ने के किसानों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से कम जल आपूर्ति के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है, इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं. कुणाल डोजी ने उनसे मुलाकात की. विवरण करुणा लालू का है.
0: उत्तरी प्रांत के खेतों में अब सप्ताह में केवल दो दिन ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम. ये CWA द्वारा लागू कदम है. यहाँ त्रियोली में किसान वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं. प्लास्टिक के बड़े ड्रम पानी के भंडारण के लिए एक व्यवहारिक समाधान है, रामदेव झिंगुरी ने कहा.
7: Arroser, nous permettre médecine. Une fois additionnel seulement, qui peut faire? Si vous ne pouvez pas amener, pas vous arroser, pas vous gagner.
0: यहाँ लगभग 100 मीटर दूर सहाय चंद्रलाल आशावादी नजर आते हैं. सीमित जलापूर्ति के बावजूद उन्होंने अपने खेत का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया. टमाटर की फसल इस वर्ष अच्छी रही है. इस सफलता का एक प्रमुख कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की कमी के बीच सिंचाई का एक प्रभावी तरीका साबित हुई है.
7: Apporter aujourd'hui une gagne renseignement qui pour gagner 3 ou des jours par semaine 3 heures temps. Mais enfin, il pas suffit mais tu veux nous pour faire plantation à vivre.
0: वहीं महेंद्रनाथ सिबालत ने भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती में बदलाव कर एकल फसल की जगह अंतर फसली खेती अपनाई.
8: Je pose le ministre de pas gagner droit m'arroser. Parce que j'ai dit le coup, bon. Nous plantons que nous pouvons faire. Parce que nous plantons des églises carreaux. Mais des églises carreaux, on peut dire, on a si beaucoup de distance qu'on ne pourra pas. Mais la prochaine fois, planter là qu'il pouvait. Comme toujours, il parlait comme ça. Tout ça, dès l'eau, la pluie tombée là, tout ça, de la perte la mer. Est-ce qu'il est fait pour vision pour avoir le truc dès l'eau?
0: Northern Plain Irrigation Project की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी. लगातार जल की कमी के चलते किसान अब इस परियोजना का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, खासकर भूजल संसाधनों पर शोध और उनके बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश के साथ.
1: आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है. सभी तमिल दंपति आदि पेरिनतम पेरकुवेजा मना रहे हैं. ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका होता है. इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और मौके पर विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं. कोयल सितल की रिपोर्ट पर ये विवरण.
2: 34 साल पहले इंदिरेन और नालिनी कोपेन ने शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया था. इस सोमवार को उसी भावना और सादगी के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक वचनों को फिर से दोहराया. वही हाल ही में विवाह करने वाले पुवानी और त्रिशैन आमांजुलू ने ये पवित्र रस्म पहली बार निभाई.
9: Souhaite tout bas nouveau et nouvelle mariée qui a ma parachati de nous beaucoup bénédiction. Comme nous premier Adi, le Kundu, c'est nous maman qui nous offert nous le premier cadeau.
10: Maman souhaitait que tout le temps reste bien ensemble, tout le temps, et tout passe bien entre nous.
2: Sri Govindarajan Payanyan dit qu'elle était.
11: Cette cérémonie est en trois phases. Nous rendons hommage à la déesse. Le Gange, ça veut dire Ganga. Et deuxièmement, c'est aussi pour l'agriculture. Quand l'agriculteur commence à planter. Et troisièmement, c'est la famille maintenant. La famille que ben, jeune couple

0: cette essence de ta, la côte qui se fait dans un mariage.
1: Mauritius Tamil Union ke adhyaksh Rajesh Raman kehte hain.
2: Des années en année, nous faisons la cérémonie et nous prions aussi pour tout ban couple qui est en harmonie dans cette ménage. En même temps, c'est comme bénédiction de parents.
1: Ibn Sahid desh ke kai ilakon mein dampatiyon ne is pavitra bandhan ka navinikaran kiya. ये एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाना तथा उनके वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का संचार करना है।
3: आज अगर सर अब्दुल रजाक मोहम्मद होते तो 120 साल के होते। गणराज्य के वराने उपराष्ट्रपति रऊफ बंधन की पहल पर मुस्लिम यूथ फेडरेशन के सहयोग से पोटलवी में मॉरिशस की आज़ादी के बानी को खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गवाहियों किताब और उनकी नस्ल की हाजिरी में सर अब्दुल रजाक मोहम्मद की छोरी विरासत पर रोशनी डाली गई जिनकी आज भी उनकी तीन नस्लें पैरवी कर रही हैं। कॉमनवेल्थ खेलों का अगला संस्करण भारत में लगाया जाएगा। इस साल हमारे एथलीटों ने मॉरिशस के लिए 4 मेडल्स जीते हैं। ग्लासगो में हमारे देश के लिए नया इतिहास रच दिया गया। रेमी फेये को जूडो में गोल्ड मेडल और पैरा एथलेटिज्म में नोएमी अल्फोंस को 2 चांदी पदक और बॉक्सिंग विधा में मैवी निकलिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये अगली रिपोर्ट सुनिए।
4: Please observe the lowering of the Commonwealth sports flag.
5: 10 खेल विधाओं में 11 दिनों तक चली रोमांचक प्रतिस्पर्धाओं के बाद रविवार शाम 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर खेलों से जुड़े सभी प्रतिभागी अधिकारी और स्वयंसेवक अंतिम बार एक मंच पर एकत्र हुए।
6: I proclaim Glasgow 2026 closed.
5: खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने की। समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा रहा। प्रसिद्ध बैंड सिंपल माइंड्स के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। समारोह का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपना रहा जो 2030 में होने वाले 24वें कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा।
7: India welcomes the world to Commonwealth Games Online 2030.
8: This is the national song of India, the Vande Mataram.
5: समारोह के दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना सहित कई भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और दुनिया भर से आने वाले राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों एवं दर्शकों को 2030 के खेलों की एक झलक दिखा दी।

विदेश में पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ। 14 लोग मारे गए हैं जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे। उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था। इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया। सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ। इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सेओल में निहायत शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। कई शहरों में तापमान बहुत उच्च दर्ज हुआ। जापान में भी 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और इसराइल में भी तेज गर्मी से आम जिंदगी प्रभावित है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी की नई संभावना उभर रही है। ईरान ओमान से बात कर रहा है लेकिन अमेरिकी पक्ष से फिलहाल बातचीत करने से इनकार कर रहा है।

और अब करते हैं मौसम की बात। पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं और मस्करिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है।

होगा। कल बारिश होती रहेगी, खासतौर पर पूर्व के एक हिस्से पर और सेंट्रल प्लेटो में। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की तरफ से चलेगी, जिसके तेज झोंके चंद इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दक्षिणी लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:38 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब। अवेन्यू कैस्केट पलमा कैथ्रोबोन में 60 साल के 60 years old श्री रविकांत अजूदा जो फुंडन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके घर अवेन्यू कैस्केट पलमा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। जानकी रोड पुतोडो विलेज में 83 साल के 83 years old श्री बालकृष्ण चमन जो दानेश्वर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल ढाई बजे इनके बेटे सुनील चमन के घर जानकी रोड पुतोडो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 2 PM। B40 ग्रीव लातू केनिक पॉइंट सैबल में 63 साल के 63 years old श्री कृतानंद मदरा जो माधु मौसम पुमदामो के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 10 बजे इनके घर B40 ग्रीव लातू केनिक पॉइंट सैबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रुजिल में 77 साल की 77 years old श्रीमती दमवंती राम केलावन पैदाइशी नामो मिया जो सरोज के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे के घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रुजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो हाफ पास 10 AM। रिजर्वर रोड गोंबे में 48 साल की 48 years old श्रीमती कुसनावती लीलू पैदाइशी नाम तायोमैन जो आशा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे के घर रिजर्वर रोड गोंबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. RM2 Radio Musti.

Well guys, 6:30 हो चुके हैं, so wishing all of you a very good evening and नमस्कार और प्रणाम. आप सभी लोगों का स्वागत है on RN2 Radio Masti. My dear lovely listeners, welcome in the third hour of your Raftar Vibes, जहां पे गिनिशा is here on the mic रात के 7 बजे तक. बस यूं ही साथ देते रहने और खूबसूरत प्यारे प्यारे गीतों के साथ. जी हाँ दोस्तों, ये अगला गाना अरिजीत सिंह के सारे फैंस के नाम.

Well, guys, check your time. Studio के घड़ी में 6:50 हो चुके हैं. And yes, thank you so much to नरवरा जी जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है आपको बताने के लिए कि नॉर्थ में बरसात की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम है ऑन द रोड. सो इफ यू आर ड्राइविंग इन द नॉर्थ सेक्शन, सो प्लीज ड्राइव केयरफुली. विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है बरसात की वजह से. सो यू ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग, आराम से गाड़ी चलाना, अवॉइड वाटर पैचेस ऑन द रोड. और कोई भी ट्रैफिक या वेदर अपडेट रिगार्डिंग कोई भी अगर अपडेट है आप हमें बताना चाहेंगे ताकि हम दूसरे जो हमारे लिसनर्स हैं उन तक ये मैसेजेस पहुंचा सके. सो यू कैन सेंड मी अ मैसेज या फोन कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ऑन 5499-1294 पर 5499-1294. सो ड्राइव केयरफुली, अवॉइड वाटर पैचेस, रोड काफ़ी स्लिपरी है, एंड मेंटेन डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग.

हाँ अगर आप हमसे पूछेंगे तो बिल्कुल हमें याद है, इसलिए तो वादा करके हम वादे से मुकरते नहीं हैं। वादे के हिसाब से हमने वादा किया था कि हम और आप मिलेंगे मंडे इवनिंग को, तो लो जी हम आ गए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ और साथ में मन में बहुत सारा प्यार लेकर आप लोगों से मिलने के लिए आ चुके हैं। और वैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार में हर एक मुलाकात उतना ही ताज़ा होना चाहिए, और वो ताजगी जब आप महसूस करते हैं उसको ही प्यार कहते हैं। और चाहे आपकी शादी को या फिर आपके प्यार को 10 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, कितने भी साल क्यों ना गुजर जाए, वो फीलिंग वैसे का वैसा ही होना चाहिए। इसलिए प्यार में थोड़ा बहुत मेहनत भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम अपनी तरफ से मेहनत भी करते हैं और थोड़ा बहुत होमवर्क भी करते हैं कि आपको कैसे कैसे गाने पसंद हैं, और उसके हिसाब से आपके मूड के हिसाब से आपके चॉइस के हिसाब

0: से हम गाने चूज करके लेकर आए आते हैं आप लोगों के लिए. सो फ्रेंड्स, इट्स ऑलरेडी 7:07 एंड मंडे इवनिंग 3 अगस्त ऑलरेडी. इस अगस्त महीने का हमने ऑलरेडी वेलकम कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये अगस्त महीना आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहे. स्पेशल तो क्या, हम तो कहते हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल हो. तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. कुछ आपके मैसेजेस को भी हम वेलकम करेंगे ऑन 5499 1294. ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ मौसम कैसा है. नॉर्थ रीजन में काफ़ी बरसात हो रही है. वैसे MBC आ रही थी तो वेदर तक हमने देखा काफी जोरदार बारिश हो रही थी. सो प्लीज प्लीज अपनी तरफ से अपना प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा. और ऐसे में विजिबिलिटी कम होती है, दृश्यता बहुत ही कम रहती है. सो यू हैव टू मेंटेन योर डिस्टेंस बिटवीन कार्स और अपने हेडलाइट्स को, ऑफ कोर्स ये तो कहने वाली बात नहीं है, ऑन रखिए. और साथ में आपको स्पीड अप बिल्कुल नहीं करना है. और हम यही चाहते हैं कि आप आराम से गाड़ी चलाइए. जिस स्पीड के हमारे गाने होंगे उसी स्पीड से अगर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ही सही, बट आप मंजिल की ओर बढ़ ही लेंगे. तो चलिए, यहाँ पर आपके मैसेजेस का इंतजार हम करेंगे ऑन 5499 1294.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Well, don't forget, evening lounge में एक छोटा सा सेगमेंट होता है जहां पर आपको पैम्पर करने का भी हमें मौका मिलता है एंड आपके मैसेजेस पर के. तो चलिए यहां पर आशीष, as usual, आप ओपन यूनिवर्सिटी से रोज की तरह एक गीत की फरमाइश सभी दोस्तों के लिए. किशन, अश्विन, विक्की, सन, विराज, नीलेश, नायको और आपके तीन पैसेंजर्स के लिए, मंती, शिखा और प्रियंका के लिए. दिल है, गीत है दिल क्या करे जब किसी से, रेमिक्स वाला वर्जन आपको चाहिए हम ट्राई करते हैं बट वी डोंट प्रॉमिस क्योंकि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं. तो आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, बिग बिग बिग हग टू ईच एंड एवरी वन. एंड चाहे आप मॉरिशस में हैं या फिर सात समंदर पार, अब्रॉड में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शायद हमें सुन रहे होंगे. डू लेट अस नो कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, हम ज़रूर जानना चाहते हैं. एंड 7:19 टू ऑल दोज, मे बी अभी आपका काम ख़त्म हो रहा है और आप घर वापस जा रही हैं, इट्स रेनिंग, प्लीज़ डू टेक योर प्रिकॉशन, आराम से गाड़ी चलाइएगा. और टू ऑल दोज जो इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं फैमिली के साथ, आपको हम विश करेंगे बना पिची हमेशा की तरह. एंड अगर कभी भी आपका शायद खाना हो चुका है और आप इस वक्त डिशेज कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं और साथ मिलकर आप किचन साफ कर रहे हैं, तो चलिए हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही गुड मूड के साथ, गुड वाइब्स के साथ हमारा साथ देते रहिए टिल 9 PM.
1: RM2 Radio Musti.
2: Paré pour plus grand festival shopping, Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, powered by SBI, ML et LIC Mauritius, point à lieu dans SBI Sissipai tous les jours, à partir du 12 août jusqu'à 16 août, de 10h à 9h. Point à shopping avec ban exposant local et international, food festival, fashion show, magic show et beaucoup les autres attractions. Utsav, India Mauritius Shopping Carnival, du 12 au 16 août à SBI Sissipai, organized by Eventworks and managed by Rajasthan Works Limited.
1: RM2
3: Radio Musti.

0: यहाँ मैं वहाँ और शायद इसी वजह से कहते हैं कि प्यार का एक साया भी होता है और वो साया आपको ही बनना है और बस कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें हमें ज़िंदगी की सीख मिल जाती है और वो गाना तो शायद आपने सुना ही होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, और बस वही साया बनकर उम्र भर आपको प्यार का एहसास दिलाना है और उसी प्यार का एहसास दिलाने के लिए हम भी यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज। बरसाती मौसम में कुछ ऐसे खूबसूरत गाने का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है और साथ में अगर आप लोग इस वक्त अपना डिनर ले रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन तो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट ही होता है और सबसे बेस्ट होता है। चलिए यहाँ पर दीजिए दाविसन आप हलाल माची से थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए, एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं ऑल्सो गुज आउट फॉर करिश्मा, एंड साथ में यहाँ पर वी लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुनीता जी, आपको बहुत बहुत सारा प्यार आपके पतिदेव की तरफ से, आपके बच्चों के नाम उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन बस प्यार से आपको याद कर रहे हैं और आपको अपने ख़ास इस ओकेजन में आपको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराने के लिए दे रिक्वेस्टेड टू प्ले अ ब्यूटिफुल गाना। तो बिल्कुल यहाँ पर एक से बढ़कर एक ब्यूटिफुल गाने ही हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti.

0: Well, शाम के 7:45 हो चुके हैं. वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी. एंड प्यार में ऐसे ऐसे गाने बन चुके हैं बॉलीवुड में कि हर एक सिचुएशन में एकदम परफेक्टली फिट होता है. चाहे आपको प्यार हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, या फिर धीरे धीरे करके आपको प्यार का एहसास होने लगा है, हर एक सिचुएशन के लिए बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गाने तो हैं ही. फिलहाल के लिए हम प्यार पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये प्यार का शो ही है और इसको हम जारी रखेंगे रात्रि के 9 बजे तक. और उतने ही प्यार से आपके मैसेजेस को भी वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294. सो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. किसी खास का बर्थडे है या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन है या फिर ऐसे ही हमारे गीतों को सुनने के बाद इस बरसाती मौसम में आप किसी को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके नाम प्यारा सा पैगाम ज़रूर भेजिएगा ऑन 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
4: Radio Musti.

0: अक्सर प्यार में ऐसा हो जाता है कि आप हर जगह उन्हीं को पाते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, और कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा लाखों में एक ही हम उनको समझते हैं, और क्यों ना हो भाई, जिनसे आप प्यार करते हैं वो तो लाखों करोड़ों में एक ही होना चाहिए। और इस एहसास को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, एंड जस्ट ट्रस्ट योर फीलिंग। अगर आपका दिल आपसे कहता है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, सो ट्रस्ट योर हार्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि योर हार्ट माइट बी ऑन द लेफ्ट साइड बट इट्स ऑलवेज राइट। दिल जो भी कहता है हमेशा सही ही कहता है। कभी कभार प्यार में दिमाग और दिल का एक अजीब सा जंग छिड़ जाता है, और लेकिन क्या कहे, एंड में जीत दिल का ही होता है। वेल 8:10 हो चुके हैं। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज। कुछ और आपके मैसेजेस को बिल्कुल हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

सामने मैं तेरे सामने और बस प्यार में आमना सामना तो होता है लेकिन कभी कभी एक हफ्ते से मुलाकात नहीं होती है, एक हफ्ता दो हफ्ते में तब्दील हो जाता है और कभी कभी एक महीने तक मुलाकात नहीं होती है। टू ऑल दोज जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बट टू ऑल दोज हु हैव बीन एबल टू मेक इट एंड जो लोग अभी तक इससे गुजर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू एंड उम्मीद करते हैं कि दूरियों से ही आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। वैसे कहते हैं ना कि प्यार में तो लोग डिस्टेंस नहीं देखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट डिटरमिन द पावर ऑफ योर लव, तो हमेशा आप डिस्टेंस को भुलाकर अपने पावर ऑफ लव पे आप फोकस कीजिए। वेल चलिए 8:28 हो चुके हैं, टू ऑल दोज कनेक्टेड विद अस राइट नाउ थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। इट्स मंडे इवनिंग 3 अगस्त 2026 और 3 अगस्त को हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है और ऐसे ही ये

0: पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा और धीरे धीरे करके ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा. बट हम पहले फोकस करते हैं इन द स्टार्टिंग एंड अगस्त के स्टार्ट में ही बहुत सारे लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल हो, हम यही प्रार्थना करेंगे एंड यही विश करेंगे कि जो भी आपने सोचा है वैसा वैसा इस महीने के दौरान होता रहे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

यार दिल को और करार देने के लिए और आपके बेचैन दिलों को थोड़ा सा चैन देने के लिए ऑफ कोर्स हम ऐसे खूबसूरत गाने लेकर आए हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जिनको सुनने के बाद आपको थोड़ा मौका मिलेगा टू रिलैक्स, सिट बैक एंड बस अपनी आँखों

0: को बंद कीजिए एंड आप इमेजिन कीजिए कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हैं जहां पर बस प्यार ही प्यार है, कुछ भी नहीं है, बस प्यार ही है. और इस इमेजिनेशन को आप थोड़ा सा और बढ़ावा दीजिए और आप धीरे धीरे खुद को अच्छा महसूस करने लगेंगे एंड इट्स अ थेरेपी. एंड कहते हैं ना कि गुड म्यूज़िक हमेशा आपको गुड फीलिंग ही देता है और ऐसे में अगर आप अपनी इमेजिनेशन को भी, अपने सोच को भी गुड वाला ही बनाएंगे तो ऐसे में आपके साथ भी गुड बेटर बेस्ट ही होगा. सो चलिए यहाँ पर वी हैव ऋषि विदेशी कनेक्टेड विद अस. थैंक यू सो मच. टुडे वाज ग्रेट फ्रॉम बीइंग एन अंकल यस्टरडे. एंड आप कहते हैं कि आई डोंट नो, मे बी अ लवर टुमारो. एंड चलिए अपनी मूडी गर्लफ्रेंड को के लिए आपने गाना मांगा है ऑफ बॉम्बू एंड टू ऑल योर गुड फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. एंड चलिए अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू एंड टू ऑल दोस जो आपको जानते हैं.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
4: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलिए दोस्तों 8:55 होने को है और इसी के साथ दिव्या के जाने का टाइम आ चुका है। हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, यानी कि कल सेम टाइम। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि।

हेलो माय डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. आपकी नीतू आपके साथ सुप्यार भरा नमस्कार प्रणाम आप सभी को. यस, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव. सो साथ निभाते हुए लेट मी वेलकम यू ऑल इस खूबसूरत सफर, इस रोमांटिक सफर में. हां जी, रोमांटिक तो हम सब हैं. और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जो रोमांस है वो उभर कर आ ही जाता है. लेकिन जब बॉलीवुड सॉन्ग्स की बात होती है तो इतने सारे रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जिनका असर कभी ना कभी दिख ही जाता है. सो आज इस खूबसूरत लेट नाइट ग्रूव्स में आपके इन पलों को खूबसूरत रोमांटिक बनाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं.

रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा से ही दिल की भाषा रहे हैं। जब शब्दों से जज्बात बयां करना मुश्किल हो जाता है, तब गीत और संगीत प्यार की कहानी कह देते हैं। बॉलीवुड के रोमांटिक गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। ये गाने कभी पहली नजर के प्यार को याद दिलाते हैं, तो कभी बिछड़ने के दर्द को भी मधुर बना देते हैं।

जमाने के रोमांटिक सॉन्ग्स की बात तो कुछ और ही थी, है ना? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी या फिर किशोर कुमार जैसे महान गायकों की आवाजों में प्यार एक इबादत बन जाता था।

इतने सारे गाने, ओ माय गॉड, लिस्ट तो इतनी लंबी है, आज भी दिल को उतनी ही गहराई से छू जाते हैं। इन गीतों में सादगी तो थी, शर्मीली मुस्कान तो थी, और एक ठहराव भी था जो आज के तेज दौर में भी सुकून दे जाते हैं।

बात चल पड़ी है रोमांटिक सॉन्ग्स की, तो 1950s से 1960s का दौर नजाकत और शायरी का दौर था। इस दौर में प्यार इज्जत शर्म और तहजीब के साथ पेश होता था। गीतों में कम शब्द, गहरे जज्बात और लाजवाब शायरी होती थी। एंड सिंगर्स लाइक मुकेश और साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मदन मोहन, इन सब गीतकारों और संगीतकारों ने प्यार को इबादत

70s की बात करें देन रोमांस में ठहराव और गहराई थी। इस दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा मचो और इमोशनल हो गए। प्यार के साथ जुदाई, इंतजार और दर्द भी शामिल हुए। आर डी बर्मन के संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने रोमांस को नया रंग दिया। रूप तेरा मस्ताना या फिर तेरे बिना जिंदगी जैसे गाने प्यार के गहरे पहलू दिखाते हैं। तो उधर मेलोडी का संकट पर जज्बात का जिंदा। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s। ये दौर थोड़ा अनिवन रहा पर फिर भी कुछ यादगार रोमांटिक गाने आए। म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट हुआ, सिंथ का इस्तेमाल बढ़ा, रोमांस थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक हो गया पर भावना बनी रही। हमें तुमसे प्यार कितना ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे गाने इस दौर की पहचान बने।

समय के साथ रोमांटिक सॉन्ग्स का अंदाज बदला, पर उनकी रूह वही रही। कुमार सानू और कयाग्निक उदित नारायण, इनके युग में प्यार थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, पहला नशा, बाहों के दरमिया जैसे गाने मोहब्बत की नशीली दुनिया में ले जाते हैं। ये गाने सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि हर प्रेमी जोड़ी की यादों का हिस्सा बन गए। 90s रोमांस का गोल्डन कमबैक। 90s में रोमांटिक सॉन्ग्स ने फिर से दिल जीत लिया। मेलोडी, लिरिक्स और आवाज का परफेक्ट संगम हुआ। नदीम शवन हो, अनु मलिक या फिर जतिन ललित, इनका मैजिक चला ही चला और प्यार मासूम, सपनों जैसा और दिल से जुड़ा हुआ।

आज के दौर के रोमांटिक सॉन्ग्स में मॉडर्न टच है, पर भावना वो ही है। वी हैव अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह ने तो अनाउंस कर ही दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग, लेकिन संगीत से उनका जुड़ाव हमेशा रहेगा। श्रेया घोषाल, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ऐसे कलाकारों ने प्यार को नई आवाज दी। तुम ही हो राबता, अगर तुम साथ हो तुम से ही जैसे गाने दर्द, इंतजार और मोहब्बत को एक साथ पिरो देते हैं। इन गीतों में जज्बात की गहराई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है।

पूरे बॉलीवुड म्यूजिक इंटरनेशनल साउंड से प्रभावित हुआ। वी हैव ए रहमान, उन्होंने रोमांस को सुकून और रूहानियत दी। तुम से ही, तेरे बिना, कल हो न हो जैसे गाने अब उन प्यार की कहानी सुनाते हैं, थोड़ा रियल थोड़ा पोएटिक। देन वी हैव 2010 से अब तक इमोशन ड्रिवन और सोलफुल लव। आज के रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव हो गए हैं। कुछ मैशअप्स, कुछ रेमिक्सेस, कुछ अलग तरीके से ही गाने बनाए जा रहे हैं। प्यार के साथ साथ वल्नरेबिलिटी, हार्ट ब्रेक और लॉन्गिंग ज्यादा दिखती है। आज के जो गायक हैं, उन्होंने रोमांस को दिल की गहराइयों से जोड़ दिया। रिलेशनशिप के सच्चे, कभी कभी टूटने वाले पहलू भी दिखते हैं।

Well, best romantic songs की खूबसूरती तो यही है कि हर पीढ़ी को जोड़ देते हैं। ये गाने वक्त, उम्र और दूरियों की सीमा को पार कर जाते हैं। जब कोई पुराना रोमांटिक गाना बजता है तो बीते हुए लम्हे आंखों के सामने आ जाते हैं, और जब कोई नया रोमांटिक गाना सुनते हैं तो लगता है कि जैसे प्यार फिर से जवान हो गया हो।

रोमांटिक सॉन्ग्स हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं बल्कि महसूस करना भी होता है। ये गाने खामोशी को अल्फाज देते हैं और दिल के कोने में छुपे जज्बातों को आवाज बन जाते हैं। शायद इसीलिए चाहे जमाना बदल जाए पर बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हमेशा अमर रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की तरह। That's why romantic Bollywood songs का evolution एक सफर जैसा है। शर्म से शुरुआत, जज्बात से गुजर और सच्चाई पर आकार रुकता हुआ। सुर बदले, अंदाज बदला, पर प्यार की रूह हमेशा जिंदा रही। Take care, bye bye, pranam.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते